जा बुरा करते हाल, पलक फड़के आए के दिल धड़के, उमर की उठा।

0: नुकसान कर दे रहा तू?
1: हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

क्योंकि जिंदगी की रफ्तार मेरे ख्याल से हफ्ते के ये दिन पर सबसे ज्यादा महसूस होती है। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफरीन, आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और थर्सडे का दिन सुबह उठते ही आपको ऐसा लगा कि अरे अलार्म चेक किया और फिर ऐसा लगा आज थर्सडे ही, आज वेडनेसडे। पूछा अपने घर वालों को क्या है आज, होता है ना ऐसा, मतलब नॉट एवरी डे बट ऐसा कभी तो मोमेंट आता है कि क्या आज सही में थर्सडे। अरे यार कितना फास्ट गया ना ये हफ्ता। अरे यार दिस हैपेंस विद मेनी ऑफ अस एंड दैट इज व्हाट द रियलिटी ऑफ लाइफ इज, कि जब आपके पास ना बहुत सारा काम होता है और जब आप बहुत ज्यादा मसरूफ रहते हैं और बस अपने जो रूटीन में रहते हो ना, आपके दिन कहाँ चले जाते हैं ना आपको पता नहीं चलता। इसीलिए मैं ये कहना जरूर चाहूंगी कि बिजी रहते हैं हम, और अक्सर शिकायत होती है कि यार बहुत बिजी है यार, बहुत काम है और ये वो चीजें हो, और मेरे ख्याल से ना शिकायत करना छोड़ दीजिए क्योंकि बिजी रहना बहुत अच्छी बात है। और जिस दिन आपके पास कोई काम नहीं होता है या आप वो काम करने के लायक नहीं होते हो, भले ही वो हेल्थ की वजह से हो या कोई और की वजह से हो, तब आपको रियलाइज होता है कि यार वो दिन अच्छे थे जब हम कोई काम में मसरूफ रहा करते थे। तो बस यही उम्मीद के साथ कि बस वीकेंड आपका आराम करते हुए जाए और आपका वीकडे बिल्कुल बिजी जाए और आप खुश रहें। आफरीन के साथ में शो की शुरुआत करते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vid vala burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
1: हाँ जी बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजना है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
1: तो हुआ कैसे है, मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
2: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आके ले लेंगे इसको। 7,500 रुपए का?
1: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख रुपए जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
2: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
1: किस चीज की फीस?
2: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
1: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
2: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
1: मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
2: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है, आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं। उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
1: ये भी तुम्हें रख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
2: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
1: हम। भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, ये बीक में रख लो हमें ज्यादा।
2: अरे यार
1: आप टूट रहे हो पब्लिक को यार।
2: तो यार ये आपको पहले सोने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी, आप मुझे बताइए, आप मुझे
1: बताइए,
2: आप मुझे आप वैसी टेंशन लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए संदीप।
1: बोलो बोलो
2: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
4: इट्स पटाक।
3: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
5: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट, गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

0: 6 decades of excellence in Qatar.
1: ਗੁੜੀ ਕਿਨੇ

0: वेल अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना राइट हियर फ्रॉम 89.6 मिर्ची 1 आपने सुना। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफ्टरीन का साथ है ऑन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। भाई साहब आ गया है हमारा यहाँ पे वीकेंड एंड सही में जब ये थर्सडे वाला दिन आता है ना तो एक अलग से खुशी होती है। इनफैक्ट जिनकी छुट्टियाँ फ्राइडे की है सिर्फ एक ही दिन की होती है। आई रियली वंडर कि कैसे आप मैनेज कर लेते हो। मीन वाइल यहाँ पर गुड मॉर्निंग के बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। गुड मॉर्निंग आफरीन, होप ऑल इज वेल। आलीशान कहते हैं गुड मॉर्निंग टू द वॉइस दैट मेक्स माई रेडियो डायल फील लाइक द बेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। आई है इतना इतनी तारीफ सुबह सुबह हजम नहीं होगी मुझे, लेकिन थैंक यू सो मच, आई हैव एन अमेजिंग शो टुडे। दैट्स इमरान टेलिंग मी ऑल दीज थिंग्स। गुड मॉर्निंग मैम, हैप्पी वीकेंड। अपना नाम तो लिखा नहीं है तो चलो ठीक है, सैफुल्लाह। ये है सैफुल्लाह। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कौन है गुड मॉर्निंग माई डियर फ्रेंड्स, हैव अ वंडरफुल डे। ये है संधू जी। सो वेल बहुत सारे मैसेजेस आए हैं तो थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग आपको भी, और आज की गुड मॉर्निंग जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा गुड है बिकॉज इट्स वीकेंड है ना। सो वेल आगे बढ़ने से पहले ज़रा हमारे तापमान पर भी नज़र डालते हैं।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट। वेल देखो वेदर कह रहा है 43 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम टेम्परेचर, 32 पर मिनिमम। ह्यूमिडिटी कल से थोड़ी सी कम है। इनफैक्ट कल शाम को मैं वॉक करने निकली थी लाइक फर्स्ट टाइम इन दिस वेदर। मेरे ख्याल से जून से मैंने वॉक नहीं किया है बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी और गर्मी, लेकिन कल नहीं थी इतनी गर्मी। गर्मी ठीक है, मतलब अब उतनी आदत हो गई। ह्यूमिडिटी की वजह से जो परेशानी होती है ना, अब के पसीना आ रहा है, कल मुझे ऐसा लगा थोड़ी कम है। और इसी उम्मीद के साथ कि गर्मी का मौसम ना जल्द से जल्द चला जाए और उसके बाद में हमारी ठंडी वाली मटर कश्ती जो है वो शुरू होगी। मोहित चौहान की आवाज में तमाशा हुई से। वैसे मौसम ना थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें भी कहता है, वो मैं थोड़ी देर से आके बताती हूँ, ठीक है ना। तब तक के लिए बने रहिएगा माइक से रूल तक आफरीन के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे were you nervous or excited to work along with your mom? What was the feeling?
3: You know, I was very nervous, क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, पर number one, first my co-actor. On set वो मेरी पहली co-actor है, पहली मम्मी नहीं बन सकती. तो मैं nervous थी, क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो nervous है तो मैं ज्यादा nervous हो जाऊंगी. अगर उनको लाइने शायद नहीं आते हैं तो मैं कैसे कहूंगी कि उनको नहीं आ रहा है. तो आई वाज लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूँ. यू नो, मैं जब वो पहली बार सेट पे आई, पर तब
2: आलिया वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं. चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah.

0: जब से झनकार से है दिल के तार में तब से।
1: और आपके प्यार में, आपकी आवाज के स्पेशली प्यार में, न जाने कितने साल से है, प्रोबेबली 90s से। वेल, मैं सोनू निगम की आवाज के बारे में बात कर रही हूँ। व्हाट मैजिक ही थ्रोज इन दिस सॉन्ग या विद हिज वॉइस। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को ऑन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। 20th of August थर्सडे का ये दिन है जहां एक्सपेक्ट कीजिएगा कि स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड डस्टी वेदर होने वाला है आज और कल के दिन। मतलब यार, वीकेंड है, थोड़ा सा राउंड वगैरह मार ले, इधर उधर ड्राइव कर ले, बट कोई ना, वी हैव अ लॉट ऑफ इंडोर ऑप्शंस एज वेल इन कतर। बट यस, कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जरूर कहता है दैट द लेटेस्ट वेदर फोरकास्ट रिपोर्ट्स नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स, ठीक है, और इसकी वजह से ना बहुत सारा डस्ट आएगा जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी इन सम एरियाज ऑफ द कंट्री। सो इन केस आप कहीं दूर ड्राइव करके जा रहे हो आज या कल, वॉट एवर, जस्ट टेक केयर। बहुत सी हवाएं रहने वाली हैं जिसकी वजह से विजिबिलिटी तो कम है ही, लेकिन वो लोग जो एलर्जी के शिकार होते हैं, और ये बस हल्का सा एक ट्रिगर चाहिए होता है जिनकी वजह से इनके नॉन स्टॉप स्नीजेस या फिर वो सारी परेशानियां। और कतर में ना दिस इज क्वाइट कॉमन आई फील, मतलब ये एलर्जीज, डस्ट की एलर्जी हो या फिर ऐसी कोई एलर्जी, दिस इज एक्चुअली क्वाइट कॉमन बिकॉज मैं खुद इसकी एक शिकार हूँ। सो यस, आई नो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर। सो यस, एकदम अपना ध्यान रखिएगा और सुनते रहेगा मिर्ची प्लेइंग नेक्स्ट मोनिका डॉक्टर और विशाल ददलानी की आवाज में। दूरियां भी है जरूरी, और हमारे और आपके बीच की दूरियां जो है वीकेंड के लिए आएगी ना। लेकिन फिलहाल तैयार, 3 घंटे बाकी है हमारे शो में, एंजॉय करते हैं। माइक से दिल तक आफरीन के साथ ऑन द चीट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: यार, मेरे ऑफिस में कोई कुछ काम ही नहीं करता, सब एक दूसरे को काम चिपकाते रहते हैं, क्या करूं मैं?
1: अब ये सोचने का काम भी तू मुझे चिपकाएगा?

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirchi One. It's hot. In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
2: वेल मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 7 बजे की तरफ और अगला गाना अरिजीत सिंह की आवाज में आपका इंतजार कर रहा है ऑन मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची फ्रेश माल
3: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: वेल, आवारापन 2 का लेटेस्ट गाना अभी आपने सुना, तो चलिए थोड़ा सा आपको मैं नॉस्टैल्जिया में ले जाऊं, यानी 90s के एरा में कुमार सानू की आवाज़ में अगला गाना सुनाऊंगी और उसके तुरंत बाद आपके लिए एंटरटेनमेंट के क्या ऑप्शन है दिस वीकेंड, यानी OTT पर नया क्या है, ये सब कुछ लेकर आऊंगी राइटर ऑन द शो मिर्ची मॉर्निंग्स विद माइक सिदिल तक आफ्टरीन, इट्स हॉट।

0: Well, देखो वीकेंड आ गया है तो इस बार मेरा सवाल ये नहीं है कि व्हाट्स योर वीकेंड प्लान्स, सवाल ये है कि व्हाट्स योर ओटीटी प्लान। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को और जरा देखते हैं मार्केट में गर्मा गर्म क्या है।
1: भाभी जी एकदम लेटेस्ट डिजाइन है,
2: फ्रेश है भैया फ्रेश है, एकदम नया आया है।
3: अरे मार्केट में नया क्या है,
0: वेल देखिए ओटीटी मार्केट का अगर हाल बताए तो अगर आपको फुल ऑन बॉलीवुड मैडनेस कॉमेडी और एक्शन का मूड है देन वेलकम टू द जंगल इज द बिग वन टू वॉच आउट फॉर। ये जियो हॉटस्टार पर है, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल एंड दैट मैसिव एंसेंबल कास्ट। वेल थोड़ा हटके चाहिए देन क्लीन अप कंपनी, दिस ड्रॉप्स ऑन 21st of August और ये प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। तीन फ्रेंड्स एक्सीडेंटली क्राइम सीन क्लीन अप को बिजनेस बना देते हैं और फिर गैंगस्टर्स एंटर द चैट। वेल इसमें आपको इंटरेस्टिंग कैरेक्टर कौन नजर आएगा एंड दैट इज रवि किशन। एंड वेल अगर मूड है थोड़ा सा लव कॉम्प्लिकेशंस और थोड़े इमोशनल कॉकटेल्स का देन डेफिनेटली कॉकटेल 2 इज नाउ ऑन नेटफ्लिक्स। शाहिद कपूर, कृति सनन और रश्मिका मंदाना विद फ्रेंडशिप रिलेशनशिप एंड अ लव ट्राइंगल डूइंग व्हाट लव ट्राइंगल्स डज द बेस्ट, आई मीन जस्ट कॉम्प्लिकेट्स एवरीथिंग। सो वेल ये है आपकी लिस्ट for this weekend. Let me know what are you going to binge watch. Meanwhile, मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, right here on Mirchi. It's hot.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La
1: virtua la burga. Milci, burga. Hello.
2: Hello.
1: Kaun?
2: Hello, Vipin.
1: कौन बोल रहा है?
2: इस्ता। मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
1: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था।
2: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
1: भाई तो इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
2: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ, और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से। पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पहाड़ के फेंक देते हैं, 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है। मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है। आप बताओ कब किया था?
1: अभी पहले किया था।
2: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
1: ऑनलाइन की थी।
2: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार, हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
1: जाना जरूरी है।
2: कहाँ जा रहे हो?
1: दुबई।
2: अच्छा तो दुबई जाना है?
1: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
2: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
1: हाँ ठीक है ठीक है,
2: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
1: आपने सही कह रहे
2: हैं। हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए। भाई साहब एक बात बताऊं?
1: बताओ।
2: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा हैं बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
1: मैं तो पागल है क्या?
2: चिल्लाओ मत। ठीक है मैं रखता हूँ।
1: करवा देना भी है आपसे।
2: मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे।
1: सॉरी सॉरी सॉरी।
2: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
1: ओके ओके,
2: आई लव यू।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर। शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप।
6: शी कैन रीड योर माइंड, she will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

वेल बादशाह और तुलसी कुमार की आवाज में ये गाना था राइट हियर ऑन मिर्ची। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक मिर्ची मॉर्निंग्स पर सिंपली आफरीन का साथ है। और देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि क्या हमारे कतर में आप कतर में नहीं क्या आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो क्योंकि वीकेंड इज हियर। सो वेल अब ये भी बता दूं कि भाई कतर में क्या क्या चल रहा है। पहले तो ये है कि अगर आप शॉपिंग के कुछ इरादा कर लिया है तो आई थिंक सो मॉल ऑफ कतर इज अ प्लेस। आउटडोर के प्लान्स तो नहीं बना सकते ना बहुत सा भी। इनफैक्ट कतर मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट भी कह रहा है कि ये दो दिन बहुत सी हवाएं होने वाली है एंड इट्स गोना बी डस्ट अराउंड। सो आई थिंक तो शॉपिंग के लिए मॉल ऑफ कतर बच्चों को भी लेकर जा सकते हैं क्योंकि वहां क्या हो रहा है वहां पर निकलोडियन के पाव पेट्रोल ये कार्टून है बच्चों का ना उसका ओएसएस स्टेज पर एक शो होने वाला है फीचरिंग चेस मार्शल रबल स्काई एंड राइडर एंड आई होप आई हैव प्रोनाउंसिएटेड दीस कैरेक्टर्स एब्सोल्युटली राइट। वेल ये शो टाइमिंग्स जो है 5 बजे है 6:30 बजे है 8 बजे है एंड दिस इज गोना गो ऑन अंटिल 29th of August। मतलब बच्चों की अभी स्कूल की तैयारियां तो शुरू हो ही जाएगी। ऑफ कोर्स बच्चों की लिस्ट होगी जिसमें उनके स्टेशनरीज हैं देन दे हैव देयर बैग्स न्यू बॉटल न्यू टिफिन ये सारी चीज़ें अगर खरीदनी है ये जगह पर पहुंच जाइए। और उसके बाद में क्या है अगर बच्चों को उनके फेवरेट ये पप से यानी ये कैरेक्टर से मिलना है उनके साथ में मीट एंड ग्रीट करके फोटोग्राफ लेने हैं तो बस शॉपिंग तो आप करने ही वाले हो ना 200 कतरी रियाल या इससे ज़्यादा की आप शॉपिंग कर लोगे देन मीट एंड ग्रीट आपको मौका मिल जाएगा। सो वेल मॉल ऑफ कतर इज द प्लेस। और ऐसे ही कतर में और क्या क्या होने वाला है कहाँ कहाँ होने वाला है सब कुछ मैं बताऊंगी लेकिन इस ब्रेक के उस पार थोड़ा सा गेम शेम खेला जाए। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ राइट ऑन मिर्ची के साथ।

0: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा. फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क. रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइंस हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप. यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस. तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, डीरिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे. TNC Supply.
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
2: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स. द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव.

0: वेल दैट वॉज एपी ढिल्लों की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची जुड़ गई है आपके साथ. Very good morning. Welcome back. It is weekend. 20th of August, Thursday का ये दिन और weekend की तरफ हम बढ़ गए हैं. और weekend आया है तो मैंने सोचा कि चलो आपको मैं चलो easy peasy सा ही दे देती हूँ सवाल. 5000 1896 वैसे मेरा WhatsApp नंबर है, नोट करके रख लीजिए. लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट खेलने वाले हैं जहाँ मैं सीन सुनाऊंगी और आपने गेस करना है कि बॉस ये सीन कौन सी मूवी से है. सो हियर इट गोस.
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट.
2: छोड़ के आओ पर तुझसे अपनी सोच.
3: हर बात पे काटने को क्यों दौड़ रहा? मैं तो सब कुछ भूल के तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रही हूँ. पूरे रंजार में हम दोनों ने प्यार किया, हम ही लड़ रहे हैं.
2: क्या करें, खून में तो बह रही है ना.
3: पैर की शुरुआत तुम लोगों ने की.
2: हमने नहीं, हर मौके पे तुम साले संडे डाले, हमारे घर लूटे, धंधे लूटे, बवाल किए. अरे बच्चों तक पैसे नहीं दिए
3: हमसे. क्या करा
2: रंजार के हर इलाके में तेरी बात के खिलाफ.
0: ऑल राइट, आई थिंक सो आवाज से तो आपने पहचान ही लिया होगा कि ये कौन है. एंड आई शुड से कि ये एक्टर्स की ना ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी थी बिकॉज इनकी एक्टिंग वॉज रियली कन्विंसिंग यार, मतलब जबरदस्त है. वेल बता दे यहाँ पर 5000 1896 इज माई व्हाट्सएप नंबर. यहाँ पर आकर आप वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, आप अपना टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं और मुझे बता सकते हैं ये कौन सी मूवी है. लेकिन अपना नाम जरूर बताओ ना दोस्त, जैसे मोहसिन ने यहाँ पर आंसर भेजा है अपना नाम बताकर, बिल्कुल वैसे ही. मीनवाइल अगला गाना जो बजा रही हूँ मैं, सुखी बाजी की आवाज, हैदर मूवी का ये गाना एंड वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड मूवी ऑफ विशाल भरद्वाज एंड शाहिद कपूर. आई वुड से एंजॉय दिस ट्रैक ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, bold eye. Only on Mirchi. It's hot.
1: पूजा भट्ट, हमने सुना है कि आपके समय में इतनी पार्टियां आपके टेरेस पे होती थी, एक किस्सा तो सुनाइए यार।
2: पर आई रिमेम्बर वन सच पार्टी जहां पे मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा आए थे और राहुल बोस मेरे दोस्त थे और वो पहली बार मेरे टेरेस पे मिले थे। तो आई रिमेम्बर आई थिंक 5:30-6 बजे तक मैं वापस आई थी एंड आई सॉ इन अ कॉर्नर मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा और राहुल बोस, तीन एक लाइन में, मतलब ऐसे तीनों सो गए, वन हेड ऑन द अदर पर्सन शोल्डर। सो वो मैंने देखा, मैंने बोला कि वाह क्या कवर बनता है ये।
1: मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा एंड राहुल बोस नीड टू डू अ फिल्म टुगेदर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए, मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
4: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
5: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live in

0: जुबिन खान की आवाज में ये गाना बॉलीवुड में एब्सोल्युटली स्पेशल रहेगा. डेफिनेटली बहुत ही कम उम्र में जुबिन गर्ग ने ये हमारा साथ छोड़ दिया है. एंड दिस सॉन्ग स्पेशली आई थिंक सो गैंगस्टर मूवी का ये गाना कई लोगों का फेवरेट होगा. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और देखिए आप और मैं मिलकर यहाँ पर खेल रहे थे हमारा रोज वाला गेम यार, जिसे मैं कहती हूँ लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. सीन सुनाने वाली हूँ बॉलीवुड की एक मूवी से और आपने गेस करना है बॉस ये सीन है कौन सी मूवी का. सो लेट्स प्ले इट हियर फॉर यू गाइस.
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट.
2: घर वालों को ऐसी हालत में छोड़ के आओ, पर तू सिर्फ अपनी सोच.
3: हर बात पे काटने को क्यों दौड़ रहा है? मैं तो सब कुछ भूल के तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रही हूँ. पूरे रंजार में हम दोनों ने प्यार किया, हम ही लड़ रहे हैं.
2: क्या करें, खून में तो बह रही है ना.
3: पैर की शुरुआत तुम लोगों ने की.
2: हमने नहीं, हर मौके पे तुम साले सन्ने डाले, हमारे घर लूटे, धंधे लूटे, बवाल किए.
0: वेल जितना इन दोनों ने इस मूवी में लड़ाई की होगी उतना ही ये करीब आए हैं रियल लाइफ में. यस यू हैव गेस्ट इट राइट. अगर अभी भी आप सोच रहे हो कि हाँ है ये आंसर है तो बता दो 5000 1896 मेरा व्हाट्सएप नंबर है. आप यहाँ पर आकर भी मुझे बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि कौन सी मूवी है. मीनवाइल यहाँ पप्पू शाफी, देन आई हैव स्टेसी मैसेजिंग मी एंड समवन मैसेज दैट इट्स हैप्पी न्यू ईयर. सलमान भाई है, नहीं भाई हैप्पी न्यू ईयर कैसे हो सकती है. मोहसिन का भी मैसेज आया है एंड एवरीवन सेज दैट आफरीन. ये है दीपिका और रणवीर सिंह की

गोलू की रासलीला, रामलीला, एंड यस, जैसे मैंने बताया था कि वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज ऑफ दीज टू, बिकॉज इनकी एक्टिंग और ये जो एक्सेंट पकड़ा था रणवीर सिंह ने, ही हैज दिस नैक ऑफ गेटिंग द एक्सेंट रियली वेल. हाँ, भले ही वो रामलीला में गुजराती या कुछ ऐसा कुछ एक्सेंट था, या फिर आप बाजीराव मस्तानी में उनके हिंदी डायलॉग इन मराठी एक्सेंट वॉज सो स्ट्रांग. वेल, आई एम अ फैन ऑफ हिज कैरेक्टर रोल्स एंड एक्टिंग. ठीक है, सो वेल, अगर जहां पर रामलीला की बात होती है तो बता दूं कि आपको अगर इस मूवी में करीना कपूर होती तो क्या रणवीर और दीपिका रियल लाइफ में एक साथ होते? बिकॉज यस, करीना कपूर वॉज द इनिशियल चॉइस और इनफैक्ट उनको साइन भी किया गया था, बट देन आफ्टरवर्ड्स शी ऑप्टेड आउट ऑफ दिस मूवी. वेल, अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि मैं कुछ गाने हैं, आई एम रियली कन्फ्यूज कि मैं कौन सा गाना बजाऊँ. तो ऑप्शन नंबर वन आपको दे रही हूँ. नंबर वन पे आता है ये वाला बजाऊँ. क्या बात है. या फिर आप ऑप्शन नंबर टू ये सुनना पसंद करोगे. मेरे पास तीसरा ऑप्शन भी है. फाइव ट्रिपल जीरो 1890 इज माई नंबर यर. और यहाँ पर जिन लोगों ने हमें आंसर करके बताया भी था ना कि ये आंसर है, जैसे अब्दुल रज़ाक का भी मैसेज आया है. सो वेल, यहाँ पर आपके मैसेजेस में ये कह रहे हैं कि आपको सुनना है ऑप्शन नंबर टू, एंड दैट इज श्रेया घोषाल और उस्मान मीर की आवाज में. माइक से रिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: ब्रदर्स एनर्जी रखना फुल, क्योंकि मिर्च लेके आ रहा है पार्टी सुपर कूल। सेट योर ड्रीम्स, सेट योर गोल्स, कॉन्फिडेंस का टूल। अब टाइम आ गया है सबको जाना होगा स्कूल, सो ज्वाइन करो ये पार्टी, ये होगी सुपर कूल। Cause it's time for Mirchi back to school. Cause it's time for Mirchi back to school.
1: Driven by Suzuki Qatar. Back to school, back to office. Go with Suzuki. Choose from a range of safe, fuel-efficient and reliable cars. Time-tested in Qatar for over 50 years.
2: Visit Suzuki Qatar showroom by Tehsil Motors, Airport Road, Doha.
3: Hello, Mirchi Helpline?
4: Yes, of course. Mirchi Helpline, bataiye.
3: Mera boyfriend bahut faltu ke kharche karta hai. It's very concerning. मैं क्या करूं?
4: अरे तो उसको बोलना तेरे से ब्रेकअप कर ले, अपने आप खर्चा कम हो जाएगा डार्लिंग।
5: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6 Mirchi One. It's hot.
2: वेल मिर्ची घड़ी का इशारा सुबह के 8 बजे की तरफ और आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स इट्स हॉट
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर

महमूद राघव चैतन्या और रुआ केक की आवाज में दैट वाज कॉकटेल 2 का गाना। एंड लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, कॉकटेल 2 भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। और जहां ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात छेड़ी दी है मैंने, तो मुसाफिर कैफे विच इज एक्चुअली इन लॉट ऑफ टॉक्स के भाई अच्छा है, इट्स एन इमोशनल जर्नी, रोमांटिक है, हाँ लव ट्राइंगल आता है, बट देन इट्स अ वेरी कन्विंसिंग लव ट्राइंगल बिटवीन विक्रांत मासे जो चंदर का रोल निभा रहे हैं, वेदिका पेंटो जो सुधा का रोल निभा रही है, एंड महिमा मकवाना जो प्रीति का रोल निभा रही है। टॉकिंग अबाउट मुसाफिर कैफे, नेटफ्लिक्स पर ये स्ट्रीम कर रहा है और आईएमडीबी की भी रेटिंग इट्स गुड एक्चुअली 7.6 है। सो मैंने अभी तक नहीं देखी है एंड आई थिंक सो आई एम द लास्ट वन टू वॉच प्रोबेबली बिकॉज बहुत लोगों ने देख ली है यार। और अगर देखिए तो मुझे बताइए आपको कैसी लगी। बस मैंने ये सीरीज तो देखी नहीं है, इट्स अ सीरीज इफ आई एम राइट, है ना, लेकिन ये जो गाना है ये मैंने कई बार सुना और मुझे बहुत पसंद है। बिकॉज इसमें ना रेखा भरद्वाज की वो नमकीन सी आवाज है, व्हिच आई रियली लाइक, एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक दरमिया राघव कौशिक और रेखा भरद्वाज की आवाज में अनमिर्ची, इट्स हॉट।

Well, now imagine कि आपकी फ्लाइट में स्टॉप ओवर है और बोर्डिंग पास के साथ साथ आपको फॉर्मूला वन वीकेंड भी अनलॉक हो जाए. Now that's what I called a layover upgrade. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को. और ऐसा ही अपग्रेड कतर एयरवेज लेकर आया है. कतर एयरवेज हॉलीडेज ने 2026 कतर ग्रैंड प्री के लिए काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है. अगर आप एलिजिबल कतर स्टॉप ओवर पैकेज बुक करते हैं विद ट्रैवल डेट्स 27 to 29 November, तो इन पैकेज में तीन दिन जो होते हैं, तीन डेज T16 ग्रैंड स्टैंड टिकट पर पर्सन इंक्लूडेड होगा. नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग. और यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग बात यह है दैट इट इज द फर्स्ट ऑफ दियर कतर स्टॉप ओवर प्रोग्राम. मतलब दोहा अब सिर्फ कनेक्टिंग एयरपोर्ट ही नहीं, डेस्टिनेशन बन रहा है. और T16 कोई रैंडम सीट भी नहीं है. इट ओवरलुक्स द फाइनल सेक्टर एंड टर्न 16, जहां कार्स हाई स्पीड से ब्रेक करके फाइनल टर्न लेती है बिफोर हिटिंग द मेन स्ट्रेट. प्लस फैन विलेज और पोस्ट रेस F1 कॉन्सर्ट्स का एक्सेस भी टिकट में इंक्लूडेड है. सो बेसिकली फ्लाइट पकड़ी थी कहीं और जाने के लिए और कतर ने बोला पहले थोड़ा फॉर्मूला वन देख के जाओ ना. That's a smart stopover tourism with some serious horsepower. मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक. और अगर कोई उस डेट के अराउंड ना ट्रैवल कर रहा है कहीं, आपके दोस्त यार कोई, सो डू टेल देम दिस ऑप्शन इज अवेलेबल. ठीक है ना, बने रहेगा हमारे साथ. और मिर्ची इट्स हॉट.

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La viva la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो
2: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
1: नहीं, कौन बात कर रहा है?
2: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
1: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
2: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
1: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
2: ओ मेरी बात सुन।
1: कौन बात कौन कर रहा है?
2: ओ महेश।
1: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
2: तो दे, जब जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
1: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
2: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
1: अरे तो जब डर गया तो तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
2: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
1: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
2: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा?
1: आदमी फिर वही बात को लेकर आ गया?
2: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
1: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
2: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मैंने तुझसे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू मैंने तुझसे
1: वाली बातें कर रहा
2: है क्या? मैं कोई पागल वाली बात नहीं कर रही। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
1: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
2: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
1: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
2: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
1: भाई तू है कौन?
2: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
1: हाँ रॉन्ग नंबर है।
2: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था
1: रॉन्ग ले रहा
2: नहीं, रॉन्ग नंबर ले, तुझसे बात नहीं, राइट नंबर ले, राइट नंबर ले, ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
1: अरे रॉन्ग नंबर,
2: अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
1: चल जा, चल काम कर, चल जा।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था आपके।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड, अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू iPhone 17 Pro Max। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
6: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live

वेल, शान की आवाज में ये गाना फ्रॉम द मूवी सावरिया और रणवीर कपूर का डेब्यू उस टॉवल में कौन ही भूल सकता है। भाई गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए भाई, वीकेंड की तरफ हम बढ़ तो गए हैं और वीकेंड में आपका प्लान सेट है, मुझे पता है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इसको मिलना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन इस सब के बीच में थोड़ा सा वक्त एक्सचेंज रेट का फायदा उठा के जरा पैसे भेजने के लिए भी निकाल लीजिए। एक्सचेंज रेट देखिए ये कह रहा है कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीस 26.25। वही जनाब पाकिस्तानी रुपीस कह रहा है एक कतरी रियाल के बदले आपको मिलेंगे 76.15। वहीं बांग्लादेशी टाका इज एट 33.45। श्रीलंकन रुपीस की अगर बात करें तो इट इज एट 90.82 एंड नेपाली रुपीस इज एट 41.88। ये थे आज के एक्सचेंज रेट। घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां और खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला 1 एंड ओनली 89.6 मिर्ची 1 पर माइक से दिल तक आफरीन के साथ। इट्स हॉट।

0: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर. शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप.
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स. द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

Well, KK Shan Kunal ki awaaz mein this song has to be perfect across all generations. Matlab hum as a millennial loved it. I'm sure that Gen Z also loves this song. And aise kuch gaane hote hain na ki iske haters ho hi nahi sakte. Us category mein aata hai Saathiya ka ye gaana. Very good morning and welcome back. आप सुन रहे हो Simply Afreen को. It's a Thursday morning. Weekend बस हमारा शुरू ही होने वाला है and it's time कि हम मिलके खेलें. Well, आज के मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स में एक ऐसी वो चेन ऑफ मूवीज जो मैं अक्सर करती हूँ और आप लोग को पसंद भी आता है वो है कुड बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो, क्योंकि थर्सडे है ना बॉस, तो दिमाग पे जोर डालो. ठीक है ना, एकदम रिलैक्स मूड में आप आ ही गए हो तो मजेदार गेम खेलते हैं जहां पर मैं तीन मूवीज ऐसे कनेक्शन बना के आपको बताती हूँ और आपने गेस करना है आखिर ये तीन मूवी है कौन सी. रेडियो सच के वॉल्यूम करो हाय और ध्यान से ये मूवी सुनो. वो कौन सी मूवी है जिसमें एक सिंपल सा कॉलेज बॉय मानता है कि बड़ा आर्टिस्ट, म्यूजिक आर्टिस्ट बनने के लिए दिल टूटना जरूरी है. उस मूवी के हीरो की और एक फिल्म है, वो ना बोल सकता है ना सुन सकता है लेकिन बिना लफ्जों के एक बहुत खूबसूरत लव स्टोरी जीता है. और उस फिल्म की हीरोइन एक और मूवी में ग्लव्स पहनकर बॉक्सिंग रिंग में उतरती है और इंडिया के लिए वर्ल्ड चैंपियन बनती है. नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग. कुड यू गेट दीज थ्री मूवीज जो मैंने अभी बताई है आपको. वेल, फिर से बताती हूँ यहाँ पर, वो कौन सी मूवी है जिसमें एक सिंपल सा कॉलेज बॉय मानता है कि बड़ा म्यूजिक आर्टिस्ट बनने के लिए दिल टूटना बेहद जरूरी है. कटारा भाई ओके, बहुत बड़ा हिंट दे रही हूँ. उस मूवी का हीरो कोई और फिल्म में ना बोल सकता है ना सुन सकता है लेकिन बिना लफ्जों के ही एक बहुत खूबसूरत लव स्टोरी जीता है. और इसी फिल्म की हीरोइन किसी और मूवी में ग्लव्स पहनकर बॉक्सिंग रिंग में उतरती है और इंडिया के लिए वर्ल्ड चैंपियन बनती है. कौन सी मूवी है बताइए मुझे. 5000 1896 इज माई नंबर. व्हाट्सएप नंबर है, वॉइस मैसेज भेज सकते हो. यू कैन जस्ट टाइप इन योर आंसर्स बट डू सेंड इन योर नेम्स. ठीक है ना, तब तक के लिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हुए एश किंग की आवाज में ये गाना ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: आलिया ने गुंडे देखी नहीं है. She doesn't like to be entertained. और एक्चुअली सच बात बताऊं तो जो मैंने उसे सिखाया फाइनली शी इज बीन एबल टू इनकल्केट इट इन हर डेली लाइफ. और इतना डिसिप्लिन लाया है इसकी जिंदगी में मैंने बात कर करके समझा समझा के इसके दिमाग में जो चीजें मैंने घुसाई है ताकि ये जिंदगी भर याद रख सके कि एक्टिंग इज प्राइमरी एंड इम्पोर्टेंट.
1: सम रियली इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन अर्जुन कपूर. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
3: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
4: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. शाम एक स्टेज और दो कमाल. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स. द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

आशिकी और सचिन जिगर की आवाज में ये गाना राइटर ऑन रिची, मैं हूँ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफरीन का साथ है ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए हम और आप मिलकर एक गेम खेल रहे थे, ठीक है, और गेम का नाम तो वैसे मेरा मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स है, जहाँ पे हर रोज एक ऐसे ऐसे चैलेंज लेकर आती हूँ मैं आपके लिए। और आज वो चैलेंज लेकर आई हूँ जो आपके लिए आप सभी का फेवरेट है, मतलब पब्लिक डिमांड पर, दैट इज मूवी की चेन। अब वो एक से दूसरा तीसरा मैं कनेक्शन बनाती हूँ।

0: मूवीज का, और आपने गेस करना है कि आखिर ये तीन मूवीज है कौन सी। सो वेल, आज की कुछ मूवीज ऐसी है। वो कौन सी मूवी है जिसमें एक सिंपल सा कॉलेज बॉय मानता है कि बड़ा म्यूजिक आर्टिस्ट बनने के लिए दिल टूटना जरूरी है। बस उस मूवी का हीरो किसी और फिल्म में ना बोल सकता है ना सुन सकता है, लेकिन बिना लफ्जों के ही बहुत खूबसूरत लव स्टोरी जीता है। और उस फिल्म की हीरोइन किसी और मूवी में वो ग्लव्स पहनकर बॉक्सिंग रिंग में उतरती है और इंडिया के लिए वर्ल्ड चैंपियन बनती है। तो बताइए आखिर आफरीन कौन सी तीन मूवीज की बात कर रही है। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, लेट अस लिसन दैट।
1: हाय आफरीन, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, हे प्रिंसन।
1: द फर्स्ट मूवी इज रॉकस्टार,
0: ओके।
1: सेकंड मूवी इज बर्फी,
0: ओके।
1: थर्ड मूवी इज मैरी कॉम।
0: ऑल राइट,
1: एंड हैव अ लवली वीकेंड।
0: यू टू हैव अ लवली वीकेंड।
2: रॉकस्टार रणबीर कपूर की,
0: ओके।
2: दूसरी मूवी है बर्फी, प्रियंका चोपड़ा और रणबीर कपूर,
0: ओके।
2: प्रियंका चोपड़ा की मेरी कॉम, ओके।
0: बिल्कुल सही। यस, ऐसे ही बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं। मालिक वकास का मैसेज है, देन आई हैव योर, इनका नाम क्या है भाई, नाम लिखा करो, रोहित का मैसेज है, देन आई हैव अहमद मोहम्मद, देन आई आल्सो हैव मोहम्मद यूसुफ खान, एंड आई आल्सो हैव ताहिर जिसने मैसेज किया है और इनफैक्ट रिक्वेस्ट भी की है कि भाई रॉकस्टार का गाना हो जाए। सो वेल, रॉकस्टार का गाना मोहित जॉन की आवाज़ में फॉर यू राइट ऑन मिर्ची। और मैं भी ऐसे ही फिर से उड़ना चाहती हूँ यार। गाना सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि यार बैग लो और निकल पड़ो कहीं। Enjoy this lovely track, माइक से दिल तक आफ्टरनून के साथ और मिर्ची के साथ।

0: driven by Suzuki Qatar. Back to school, back to office. Go with Suzuki. Choose from a range of safe, fuel-efficient and reliable cars. Time-tested in Qatar for over 50 years.
1: Visit Suzuki Qatar Showroom by Tesi Motors, Airport Road, Doha.
2: अभी मिर्ची हेल्पलाइन से बात हो रही है।
3: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
2: अरे भाई, मेरी बीवी कहती है मैं जब से मैनेजर बना हूँ तब से खड़ूस हो गया हूँ। घर पे भी ऑफिस की तरह बिहेव करता हूँ, जरा भी रोमांटिक नहीं रहा। अब क्या करूँ भाई मैं?
3: अरे तो सिंपल है ना, ऑफिस में रोमांटिक बनना स्टार्ट कर दे।
4: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings. Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings.
0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
2: 89.6
0: Mirchi 1. It's hot.
3: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन तो है आपके साथ, लेकिन मिर्ची घड़ी का इशारा जो है वो कर रही है एग्जैक्टली सुबह के 9 बजे. सो वेल, अगला गाना जो है सुपर हिट तो होना ही है ना, बस हमारे इमरान भाई की मूवी से है, दैट इज आवारापन 2 से है. और अगर आपने ये मूवी ऑलरेडी देखी है तो टेल मी, या जाकर देखो क्या थिएटर में, या OTT पर आने का इंतजार करूं.
4: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: Mirchi, fresh maal.
5: Love, loss, or hope ka musical safar. Ve Junoon.

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: वेल देखो, वीकेंड आ गया है, तो इस बार मेरा सवाल ये नहीं है कि व्हाट्स योर वीकेंड प्लान्स, सवाल ये है कि व्हाट्स योर ओटीटी प्लान। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और जरा देखते हैं मार्केट में गर्मा गर्म क्या है।
2: नया आया है।
3: अरे मार्केट में नया क्या है?
1: वेल देखिए, ओटीटी मार्केट का अगर हाल बताए तो अगर आपको फुल ऑन बॉलीवुड मैडनेस, कॉमेडी और एक्शन का मूड है, देन वेलकम टू द जंगल इज द बिग वन टू वॉच आउट फॉर। ये जियो हॉट स्टार पर है अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल एंड दैट मैसिव एंसेंबल कास्ट। वेल थोड़ा हटके चाहिए, देन क्लीन अप कंपनी, दिस ड्रॉप्स ऑन 21st of August और ये प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। तीन फ्रेंड्स एक्सीडेंटली क्राइम सीन क्लीन अप को बिजनेस बना देते हैं और फिर गैंगस्टर्स एंटर द चैट। वेल इसमें आपको इंटरेस्टिंग कैरेक्टर कौन नजर आएगा, एंड दैट इज रवि किशन। एंड वेल अगर मूड है थोड़ा सा लव कॉम्प्लिकेशंस और थोड़े इमोशनल कॉकटेल्स का, देन डेफिनेटली कॉकटेल 2 इज नाउ ऑन नेटफ्लिक्स। शाहिद कपूर, कृति सनन और रश्मिका मंदाना विथ फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप एंड अ लव ट्राइंगल डूइंग व्हाट लव ट्राइंगल्स डज द बेस्ट, आई मीन जस्ट कॉम्प्लिकेट्स एवरीथिंग। सो वेल ये है आपकी लिस्ट फॉर दिस वीकेंड, लेट मी नो वॉट आर यू गोइंग टू बिंज वॉच। मीनवाइल मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट इट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Murga, murga.
1: La virtua la murga. Milci, murga. Hello.
2: Hello.
1: Anji.
2: Vivek ji.
1: Anji, bataiye.
2: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं। विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़, ग्लास व्लासेज, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
1: ठीक ही कह रहे हो।
2: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
1: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक तो सोसाइटी वाले इतने हैं। अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
2: अच्छा,
1: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
2: बिल्कुल
1: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखता
2: हूँ, ख्याल रखना, मिलते हैं किस दिन।
1: हाँ हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
2: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
1: अरे कुछ नहीं यार।
2: नहीं, फिर भी क्या, मतलब काफी चीखों की आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
1: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की।
2: अच्छा अच्छा,
1: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
2: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
1: हाँ,
2: अभी इन्होंने चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत। आप कह रहे हो चिल्ला के बोला क्या आपको, आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर,
1: मजे आ रहे हैं,
2: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
1: अरे तेरे को मजा आ रहा है, यहाँ तू मजे ले रहा फोन करके?
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेल बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटाक। She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. शाम एक स्टेज और दो कमाल, टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

अदनान सामी की आवाज में. I love this गाना यार, and in fact it's difficult to hate any of अदनान सामी's song. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को और हम आ गए हैं हमारे वीकेंड के तरफ, जहां वीकेंड इज बजिंग विद इवेंट्स अराउंड इन कतर. देखिए मॉल ऑफ कतर के स्टेज पर जो ओएसिस स्टेज है वहां पर पॉ पेट्रोल का द बिग शो रेस्क्यू ये हो रहा है एंड दिस इज गोना हैपन अंटिल 29th ऑफ अगस्त. 5 बजे से लेके 5:30 बजे तक, देन 6:30 का एक शो है, 8 बजे का एक शो है एंड एक्सेस इज ऑब्वियसली फ्री ही है तो है. अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों के लिए बिफोर they head back to school and एकदम busy हो जाएंगे क्योंकि यार जाते ही इनके exams शुरू होने वाले हैं. So yes, and I'm sure अभी से इन्होंने exams की तैयारी वगैरह शुरू कर ली होगी. So इन्हें एक और जगह चलो लेकर चले ही जाओ ना before they start their school, and that is Colourverse. It is an experience for all the kiddos out there. And कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे अंदर का ना बच्चा जिंदा हो जाता है because we couldn't experience any of such type of events है ना जब हम बच्चे थे, हम छोटे थे. हमारे अलग अलग किस्म के इवेंट्स होते थे, वो अलग बात है. चलिए ये दो मैंने चीज़ें तो बता दी हैं जो बच्चों के लिए है एंड आई थिंक सो अभी जो टाइम है ना this week, this entire weekend should be dedicated lastly to kids only, क्योंकि अब इनका exams आने वाले हैं और school में बहुत busy हो जाएंगे. So ये तो बनता ही है इनके लिए. तो चलिए आप सुनिए अगला गाना जो है अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में. जलेबी मूवी का ये गाना, मूवी आई डोंट नो कौन सी मूवी है बट गाना सुना है और अच्छा भी लगता है. माइक से दिल तक आफरीन के साथ अनवर्चित शॉट.

0: decades of excellence in Qatar. घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड, अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: नंदीश संधू टीवी एक्टर, बालों में क्या लगाते हैं ये बता के आप चले जाइए। इतने सुंदर बाल तो हो ही नहीं सकते।
3: आपकी आंखें वैसे बहुत सुंदर हैं।
2: मैं अपनी आंखों में कुछ नहीं लगाती सिवाय जुनून
3: के। सिवाय जुनून के।
2: अगर ये अपार शक्ति खुराना और नंदीश संधू और सिद्धांत गुप्ता के बीच के ओ आ में आप सुन नहीं पाए, मैंने कहा मैं अपनी आंखों में जुनून के अलावा कुछ नहीं लगाती। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

नंदिनी स्वीकार और अरिजीत सिंह की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। और क्या बात है, आज तो शायर आप बन गए। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और इस वक्त पर ना रोज मैं कहती हूँ कि आफरीन की डायरी से, लेकिन आज डायरी मेरी नहीं है, आज के अल्फाज आए हैं आप में से ही एक लिसनर की डायरी से। और वैसे भी शायरी सिर्फ बड़े बड़े शायरों की थोड़ी होती है, कभी कोई एक मुलाकात, कोई एक अधूरी सी बात या कोई याद इंसान को शायर बना ही देते हैं। तो अर्ज किया है, रहने दे उधार एक मुलाकात यूं ही, रहने दे उधार एक मुलाकात यूं ही, सुना है उधार लेने वाले को लोग भुलाया नहीं करते। वाह, कुछ उधार ऐसे भी होते हैं ना जिनका चुक जाना एक्चुअली लॉस लगता है। अगर आपके पास भी ऐसे कोई अल्फाज छुपे बैठे हैं तो भेज दीजिए 5000 1896 पर। क्या पता माइक से दिल तक अगली जो शायरी है आपकी डायरी से निकले। बने रहेगा मेरे साथ यानी आफरीन के साथ ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाए छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ।
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

आशा ताई की आवाज में ये गाना, आई जस्ट लव आशा ताई, एंड फॉर द फैक्ट कि वो 90s में अगर गाना गा रही है या फिर वो गाना अगर 80s में गा रही है, 70s में गा रही है, शी साउंडेड रेलिवेंट इन ऑल द एरा. मतलब 2000 की एरा में भी वो गा रही है, लास्ट तक उन्होंने गाने गाए हैं. एंड फॉर दिस रीजन एक इंस्पिरेशन दी गई है कि भाई जो भी उम्र रहो भाई, अंदर का जो वो बच्चा है, अंदर की वो जो जवानी है, यू शुड always feel and always behave like you're young at heart, hai na. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है, वैसे वेलकम तो कर रही हूँ लेकिन टाटा बाय बाय कहने के लिए, क्योंकि यार ये जो चार घंटे का सिलसिला है और ये पूरा हफ्ता है, इट्स फाइनली टाइम टू रैप इट अप एंड आई गॉट गो. भाई भूख तो बहुत लगी है मुझे, सो मैं जा रही हूँ मेरा नाश्ता वाश्ता करने के लिए. लेकिन आप जो है, आपका तो बस अब वीकेंड बस शुरू ही होने वाला है बॉस. और क्या सोच रहे हो वीकेंड पर? आई एम श्योर आपने बहुत सारे प्लान्स किए होंगे, आप कहीं पर घूमने जाने वाले होंगे, शॉपिंग कर रहे होंगे या लोगों से मिल रहे होंगे. वैसे मैं तो गेम

डेट करने वाली हूँ, लेट मी टेल यू. लेकिन एक चीज इस सब बीच में आप भूल नहीं जाना कि आपको नेक्स्ट मंथ यानी 25 सितंबर को हमसे मुलाकात करनी है और साथ ही साथ सुहानी से भी मुलाकात करनी है. अरे भूल गए थे ना, हाँ देखो मैंने याद दिलाया आपको. सो बस फटाफट से ये वीकेंड में ना ये काम एक निपटा ही दो. यू टिकट्स पर जाओ, एस सिटी पर जाओ, सोनू सिटी पर जाओ और टिकट्स खरीद लो. उसके बाद जो करना है करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, मस्त रहो. तब तक के लिए मैं हूँ आफरीन आपके साथ. टाटा बाय बाय, सायोनारा, मिलूंगी अगले हफ्ते. अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहो बंधुओं. और ये हैप्पी हैप्पी आफरीन से एक हैप्पी हैप्पी गाना आपके तरफ बनी दयाल और हर्षदीप कौर की आवाज में आता हुआ. और मिर्ची, इट्स हॉट.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: हाँ, मुझे रनिंग शूज चाहिए और इसके लिए मैंने इतने वीडियोस देखे कि वीडियो देखते देखते थक गया। समझ नहीं आता क्या करूँ।
1: अरे तो अब फुट मसाज के वीडियो देखना, थकान दूर हो जाएगी और क्या।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: डार्लिंग उषा उत्थप एंड रेखा भरद्वाज की आवाज में फिल्म सात खून माफ से ये गाना तो मैंने आपको सुनाया, जिसमें प्रियंका चोपड़ा जो है अपने अलग अंदाज में हमें नजर आई। लेकिन अब सात खून माफ की कहानी जो है ना, हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना बता दूं, मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 10:08।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: देखो जिंदगी में ना, खासकर इस गाड़ी में कोई सात खून माफ कर दे, लेकिन ना इन छोटी बातों को भुला पाना ये बड़ा मुश्किल है ना।
2: मिर्ची अंशु
0: वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। लेकिन अगर आज के दिन को देखने की कोशिश करें भाई, एक ऐसा दिन जिसका होता है हम सभी को बेसब्री से इंतजार है, आई एम टॉकिंग अबाउट थर्सडे, मतलब थर्सडे आए एंड जिंदगी में वीकेंड मोड जो है वो ऑन ना हो तो फिर क्या ही हो यार। सच कह रही हूँ, मतलब अगर अपनी लाइफ की स्टोरी की मैं बात करूँ ना, आप हफ्ते भर मुझे कितने भी सुबह क्यों ना उठा लें, क्योंकि ऑर्गेनिकली बाय डिफॉल्ट मेरा ब्रेन जो है ना वो नेचुरल अलार्म मोड में जाते हैं, खुद ब खुद मेरी नींद जो है ना सुबह सुबह खुल जाती है। लेकिन फ्राइडे एक ऐसा दिन है, अगर तुमने मुझे उठाने की सुबह सुबह कोशिश की तो इतना समझ जाओ सोई हुई शेरनी को जगाने की कोशिश कर रहे हो। इन दैट सिनेरियो मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन हाँ ये जो है ना सात खून माफ करने से भी बड़ी वाली बात हो जाएगी। वेल, लेकिन यार ह्यूमन माइंड भी कितना कमाल है, राइट? मतलब इस नींद के सिलसिले को अपनी लाइफ में देखने की कोशिश करूँ ना, तो कभी कभी जेन्युइनली ऐसा लगता है कि वीकडेज में भाई बतौर इतनी नींद आती है जिसकी कहानी शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। कभी कभी, नॉट यूजुअली, अब कब नहीं होता है ये भी मैं बताऊंगी, लेकिन जैसे ही वीकेंड आता है कहीं ना कहीं नेचुरली नींद जो है ना गायब हो जाती है। नहीं, मेरी लाइफ में तो ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन हाँ, जब मुझे मालूम हो कि मैं प्रॉपर अपने वो फिटनेस की रिजीम को मेंटेन कर रही हूँ, खान पान जो है वो प्रॉपर है, वक्त से मैंने खा पी लिया है, तब भाई नींद भी प्रॉपर आती है एंड ये बॉडी नामक सिस्टम जो है ना ये भी सही तरह से चलता है। तो कुल मिलाकर जैसे बाकी चीज़ें आपकी गाड़ी, घर की मशीन रेगुलर लाइफ में मेंटेनेंस मांगते हैं, वैसे आपका ये शरीर भी मेंटेनेंस मांगता है। तो इतना ही कहना चाहूंगी यार, अपने खान पान का बहुत ख्याल रखें, अपने आप को फुल्ली हाइड्रेटेड रखें, खुद की नींद का और भी ज्यादा ख्याल रखें। बाकी तुम्हारे एंटरटेनमेंट एंड इमोशंस के ख्याल के लिए हम हैं ना जी, टिक्के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, इट्स हॉट। चलिए मेरे साथ कनेक्टेड है, मुझे सुन रहे हैं, जल्दी से गुड मॉर्निंग मैसेज हो जाए। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस, 5000 1896, 5000 1896। आने वाला गाना रिजित सिंह की आवाज में ब्रांड न्यू ट्रैक, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।
1: मिर्ची, फ्रेश माल।
3: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो
2: हेलो
1: कौन?
2: हेलो विपिन,
1: कौन बोल रहा है?
2: इस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
1: हाँ पासपोर्ट अप्लाई किया था।
2: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
1: भाई तो इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
2: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से, पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पहाड़ के फेंक देते हैं। 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे हो, सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तो अब क्यों आवाजें आ रही है। मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है। आप बताओ कब किया था?
1: अभी पहले किया था।
2: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
1: ऑनलाइन ऑनलाइन की थी।
2: भैया आहिस्ता बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से और हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
1: जाना जरूरी है?
2: कहाँ जा रहे हो?
1: दुबई।
2: अच्छा तो दुबई जाना है?
1: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
2: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
1: हाँ ठीक है ठीक है,
2: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
1: आपने सही कह रहा
2: है। हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए।
1: नहीं बोलना, नहीं बोलना।
2: भाई साहब एक बात बताऊँ?
1: बताओ।
2: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था कैसी हो। वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
1: मैं तो पागल है क्या?
2: चिल्लाओ मत, ठीक है मैं रखता हूँ।
1: करवा देना भी है आपसे।
2: मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे।
1: सॉरी सॉरी सॉरी।
2: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
1: ओके ओके,
2: आई लव यू।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट। गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

Well, Arijit Singh and Nikita Gandhi ki khubsurat si awaaz, and what a lovely track it is from the film War 2 featuring the stunning Hrithik Roshan and Kiara Advani. वैसे अगर आवन जावन इस सिलसिले की बात करूं तो इसे शुरू करने की बारी जो है वो आ ही चुकी है. मिर्ची अंशु एब्सोल्युटली वो दिन दूर नहीं जब आप कतर में बहुत जल्द तागाद जो है आपको बढ़ती हुई नजर आएगी. फाइनली जब समर वेकेशन ओवर हो रहे हैं तो धीरे धीरे लोग बाग जो है छुट्टियां बिताने के बाद मनाने के बाद कतर की तरफ अपने दूसरे घर की तरफ लौटने की तैयारी 101% कर रहे हैं. एंड देखेंगे आप सेप्टेम्बर का वो महीना होगा, इनफैक्ट ऑगस्ट एंड ही वो वक्त होगा जब अचानक से आपको रियलाइज होगा कि भाई अब जो है ना घर से 15 मिनट पहले निकलने की बारी शुरू हो चुकी है. क्या है ना रास्ते को कोई और ऑक्यूपाई करे ना करे लेकिन ये बच्चे जरूर कर लेते हैं. ग्रेजुअली जैसे ही स्कूल शुरू होती है भीड़ भड़ाका जो है वो शुरू होने लगता है. घर की जद्दोजहद के साथ रास्ते की जद्दोजहद भी शुरू होती है. तो बस अब एक बार फिर से अपने अलार्म को 15 मिनट पहले लगाकर 3 बार स्नूज में तो डालना ही है लेकिन हाँ अपने वक्त को सही तरह से मैनेज करने की बारी जो है आ गई है. बस बैक टू स्कूल की बारी आ रही है तो बैक टू स्कूल से चलते बहुत सारे डिस्काउंट्स ऑफर्स प्रमोशंस जो हैं इस वक्त कदर के बहुत सारे मॉल्स में हाइपरमार्केट्स में चल रहे हैं. आई एम प्रीटी श्योर आप सबने शॉपिंग करने की कोई ना कोई तैयारी तो कर ही ली होगी. चलिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी. अगर मैं बचपन के दिनों को सोचने की कोशिश करूं, स्कूल फिर से शुरू होने की बात करूं, आपकी जिंदगी की वो सबसे कौन सी खूबसूरत मेमोरी आप मुझे एक बात बताना. मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है अगर मैं अपनी लाइफ को देखने की कोशिश करूं, भाई जब भी मैं एक नए साल में जाती थी ना एक नया ईयर शुरू होता था सो आई वुड मेक श्योर कि मैं घर से निकलने से पहले अपनी एक नोटबुक में ज़रूर लिखा करती थी कि लास्ट ईयर मेरे जितने परसेंटेज आए थे उससे 1% जो है मैं ज़रूर ज़्यादा लाऊँ, कम से कम 1%. सो दिस इज समथिंग दैट आई वुड डिसाइड फॉर माई सेल्फ एवरी ईयर. हाउ अबाउट यू, आपके लिए नया साल क्या नयापन लेकर आता था? 5000 1896. आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. इंस्टाग्राम Mirchi1 कतरिया मिर्ची अंशु. मीनवाइल रेखा भारद्वाज की आवाज राघव कौशिक का साथ बहुत ही प्यारा सा गाना फ्रॉम मुसाफिर कैफे सीरीज राइट हियर फॉर यू. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: दर्शन रावल एंड रोचक कोहली की खूबसूरत सी आवाज़, चौनिता गांधी का साथ, एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़ फ्रॉम द फिल्म धड़क 2। ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन इस वक्त आपके बीच में कुछ और बहुत ही खूबसूरत पहुंचाने वाली हूँ।
1: मिर्ची अंशु।
0: देखो, ऐसे तो कई लोग कहते हैं कि हम जो है ना फूडी हैं, ऐसे कई लोग कहते हैं कि हम जो है बॉलीवुड लवर हैं, कोई कहता है मुझे ना म्यूज़िक का बड़ा क्रेज़ है। कहने को तो बहुत कोई बहुत कुछ कह जाता है, अरे कुछ तो लोग कहें, लोगों का काम है कहना, अगर हम माने तो कैसे माने, कैसे यकीन करें। चलो कोई ना यार, आपको आपके दावे को सच करने की और कहने की बारी जो है ना आप मैं दे रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आप जो है पक्के इन सच्चे वाले मिर्ची के फैन हैं, यानी कि बॉलीवुड के लवर हैं, साथ ही म्यूजिक जो है आपकी रग रग में बिल्कुल मेरी तरह बहता है, तो अब 90s के एरा में मिलेनियल्स एक बार फिर से डाइव इन करने की बारी आ चुकी है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, आज जो है मैं आपके बीच बहुत कुछ स्पेशल करने वाली हूँ। एक बहुत ही आइकॉनिक सा 90s का ट्रैक है जिसकी मिड का कोई पार्ट एक्सट्रैक्ट कर मैं आपके बीच पेश करूंगी। आपको उस गाने को सुनना है, सुनकर फटाफट से मुझे यह बताना है कि यह है तो है किस एक्टर पर पिक्चराइज्ड, किन एक्टर्स पर यह गाना पिक्चराइज्ड है। एंड आपको एक ब्राउनी पॉइंट जो है मैं 101% दूंगी अगर आप जो है ना मुझे साथ में यह भी बता दें कि किस फिल्म से। तो चलिए जी, एक काम करें, आप तक ये गाना पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन आंसर कहाँ देना है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, विच इज 5000-1896। वी विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची 1 कतरिया मिर्ची अंशु। सो हियर वी गो।

हाय, ये गाना, इनकी केमिस्ट्री एंड क्या म्यूजिक यार। फटाफट से बताओ कि ये गाना है तो किन एक्टर्स पर पिक्चराइज्ड है, साथ ही किस फिल्म से है। 5000186। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। मीनवाइल हरनूर एंड श्रेया घोषाल की आवाज में आपको अगला प्यारा सा गाना सुना दूं। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: ये थे विक्रांत मैसी और मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
3: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड She is coming for the very first time.
4: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

पहले अरिजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज़, सचिन जगन की कंपोजिशन एंड क्या प्यारा सा गाना है यार, क्या खूबसूरत सा गाना। ये गाना तो उस वक्त मैंने आपको सुना दिया, लेकिन हाँ ये मान गई कि किसने कहा कि आपको खबर नहीं है। जी आपको तो पूरी खबर है। मतलब से कुछ देर पहले मैंने आपके बीच गानों की कोई तो पंक्तियां पेश की थी, आपको उन पंक्तियों को सुनना था, आइडेंटिफाई कर बस मुझे ये बताना था कि ये है तो है किन एक्टर्स पर पिक्चराइज्ड, एंड साथ ही ब्राउनी पॉइंट्स का मैंने वादा किया था कि अगर आप फिल्म का नाम भी मुझे बताएंगे। करेक्ट आंसर देना था आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 5001896। आई एम रिपीटिंग द नंबर फॉर द सेक ऑफ दोज पीपल जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है एंड अभी भी सुनते हुए उन्हें लगे कि अंशु हमने ये गाना पहचान लिया है। तो चलिए एक बार फिर से सही जवाब के पहले सुना दिया जाए। हियर यू गो।

0: जगह खाली, अरे आपके लिए तो पूरा दिल है यार जगह की, अब मैं क्या ही बात करूं। लेकिन देखें लोग बाग ने क्या कहा है।
1: रेडियो मिर्ची, ये अक्षय कुमार और माधुरी दीक्षित दोनों गा रहे हैं फिल्म आरजू।
0: वेल एब्सोल्युटली आपने जो कहा ये सही, लेकिन पार्शली सही। अगर इस फिल्म के पिक्चराइजेशन की बात करें तो हमें नजर आए अक्षय कुमार और माधुरी दीक्षित इस गाने में, साथ ही फिल्म का नाम है आरजू। थैंक यू। उसके अलावा राव साहब, साथ ही यूसुफ अहमद, मुहिम, बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया है, सद्दाम। वेल आप सभी का मैसेज जो है दिल से अप्रिशिएटेड है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। वैसे एक बात बताऊं, अगर इस गाने की मैं बात करें, म्यूजिक की बात करूं, भाई क्या कमाल की कॉम्पोजिशन बाय अनु मलिक, कुमार सानू एंड अलका याग्निक की खूबसूरत सी प्यारी सी आवाज़। एंड इस गाने को अगर किसी ने शब्द दिए तो वो है आनंद बख्शी। सैफ अली खान भी हमें इस फिल्म में नजर आए थे, लेकिन जब इन जनाब ने कहा कि ये गाना गा रहे हैं माधुरी दीक्षित एंड अक्षय कुमार, भाई हमें से ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो एक वक्त पे यही माना करते थे कि जो भी हम गाने देखते हैं या सुनते हैं, ये ना जो एक्टर्स उस पे नजर आते हैं वही ये गाना गाते हैं। एंड मैं तो बचपन में ये सोचती थी मम्मा शाहरुख खान कितना अच्छा गाना गाता है, ये तो मेरा सबसे फेवरेट सिंगर है। बाद में पता चला कि भाई इन चेहरे के पीछे, इन किरदारों के पीछे, इन आवाज़ों ने ना जाने कितने खूबसूरत एहसास हमारी ज़िंदगी में लेकर आए। चलिए जी, अभी फ़िलहाल इस प्यारे से एहसास के चलते ये अगला गाना इसी फिल्म से आप तक पहुंचा दिया जाए। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: पर साज पटन सुबोध शर्मा की खूबसूरत सी आवाज एंड बिल्कुल आपके और हमारे रिश्ते की बात करें तो ये नया थोड़ी ना, ये तो आज सालों पुराना है। मिर्ची अंशु यह सच कहूँ वक्त निकलते पता ही नहीं चलता और ये बात जो है सच है और कितनी सच है ना। मतलब अगर आपके उस मेरे रिश्ते की बात करूँ, उस ताल्लुक की बात करूँ, तो मैंने सोचा ही नहीं था कि देखते देखते 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने। अगर तारीख पे मैं फोकस करूँ, बहुत अच्छी तरह से मुझे याद है 22 अगस्त वॉज द फर्स्ट डे जब मैं पहली बार मिर्ची के ऑफिस आई थी। 1 महीने तक खूब दिल लगा के पूरी टीम की मदद से मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग की यार। एंड 22 सितंबर को ऑफिशियली मैं मिर्ची का हिस्सा बनी थी। एंड उसके बाद आपकी और मेरी मुलाकातों का ये सिलसिला अगर शुरू हुआ, सो दैट वाज ऑन 4th of October। कुल मिलाकर अगर मिर्ची के साथ अपनी जर्नी को देखने की कोशिश करूँ तो मैं इस 2 दिनों की दूरी में 5 साल मेरे फाइनली इस सफर के पूरे होने जा रहे हैं। तभी तो मैंने कहा कि इन 5 सालों में आपका और मेरा ये रिश्ता कितना खूबसूरत बना यार, कितनी यादें, ना जाने आपके कितने मैसेजेस, वो आपके प्यार भरे इनकरेजिंग वर्ड्स जिन्होंने मुझे फर्दर हमेशा यही मोटिवेटेड रखा कि भाई अपने दिल से ना जो भी मैं कर सकूं बस ये कोशिश करूं कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में रोशनी की एक खूबसूरत सी किरण जो है ना मैं ज़रूर लाऊं और ज़रूर छोड़ने की कोशिश करूं। कई बार आपकी बातों ने मुझे बहुत इमोशनल किया, कई बार मेरे इमोशंस बस कुछ इस तरह बहते चले गए कि रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं किसी स्ट्रेंजर से बात कर रही हूँ। माना कि मैंने आपको देखा नहीं है, माना कि मैंने आपको सुना नहीं है, लेकिन आपका और मेरा रिश्ता जो है ना कहीं कुछ इस तरह का लगता है कि भाई कोई तो दिल की डोर है जो हमें बांधी हुई है। चलिए आज मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। अगर मैं अपनी बात करूं या अपने शो की बात करूं, पहले मैं आपसे मॉर्निंग्स में मिला करती थी 4 साल तक, उसके बाद जनवरी के महीने से मैं इस नए टाइम बैंड में आपके साथ जुड़ी, वो कौन सी एक बात है अंशु की जो आपको बहुत अच्छी लगती है, मेरी वो कौन सी बात जो जेन्युइनली आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? आज मुझे ना आपके मुंह से मेरी ज़रा तारीफ सुननी है। 5000 1896 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम Mirchi1Qatar एंड Mirchi Anshu, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। लेकिन अभी फिलहाल सुबोध शर्मा की इस प्यारी सी आवाज़ में एक अगला ब्रांड न्यू ट्रैक आपके रास्ते पहुँचाती हूँ। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।
1: मिर्ची फ्रेश माल।
2: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून।

0: इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी, DDA से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने DDA फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
2: तो हुआ कैसे है, मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई क्या निकलेगा हमारा।
1: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको।
2: कितने का ड्राफ्ट है मेरा?
1: 7,500 रुपए का।
2: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख रुपए जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
1: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
2: किस चीज की फीस?
1: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना DDA के फ्लैट के लिए।
2: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने मेरे मतलब इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी।
1: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
2: मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
1: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है। आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे DDA का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
2: ये भी तुम्हें रख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
1: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
2: हम। भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें तो रख लो, ये बीच में रख लो हमें तो यार।
1: अरे यार
2: हो गया, लूट रहे हो पब्लिक को यार।
1: तो यार ये आपको पहले सोने दे ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम DDA की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ DDA से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी,
2: अरे अभी अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है जो नाम लोगो चेंज करा अपना DDA ने।
1: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
2: तुमने आम इंसान का तुमने बनाया ठीक है ना। हाँ? भैया पैसे भाड़
1: मगा। आप मेरी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए संदीप।
2: हाँ बोलो बोलो
1: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
4: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू ऐड द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट, गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

Well, देवने की नेहा कक्कड़ की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली पावर पैक ट्रैक इट इज. देखो बदरी की दुल्हनिया तो वो लेके चला गया, लेकिन कोई और है जो मुझे जिंदगी के बहुत खूबसूरत से मायने बस सिखा ही गया. मिर्ची अंशु. देखो बात इतनी होती कि कभी कोई छोटी सी बात जो है ना आपकी जिंदगी के जीने के पर्सपेक्टिव को पूरी तरह से बदल के रख देती है. हम अक्सर अपनी लाइफ को उस तरह से जीते रहते हैं जिस तरह से हमें सिखाया गया है, जिस तरह से सोसाइटी, समाज, देश, दुनिया हमें प्रोजेक्ट करते आई है. लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि जिंदगी नामक सफर में आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो ना ही सिर्फ उन सारे पहलुओं को आपके लिए बदल कर रख देता है, बल्कि आपके सामने अगर कुछ लाकर रखता है तो वो है आपका आईना. एक ऐसा आईना जो आपको ये मौका देता है कि आप खुद को देख सकें, खुद को परख सकें, खुद को समझ सकें. अब मैंने ऐसा क्यों कहा, चलिए इसके पीछे ज़रा सा आप तक ना कॉन्टेक्स्ट पहुंचाते हैं. देखिए अक्सर हमारी पहचान जो होती है ना, हम किस जगह से आते हैं, हम किस नेशन को बिलोंग करते हैं, या बहुत सारे सोसाइटल पैरामीटर्स से होती है. हमें लगता है कि हाँ यार हम जो हैं बस यहीं हैं. लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ कि एक बार मुझे एक शख्स मिला जिसने मुझे ये कहने की कोशिश की कि माना तुम कहीं से भी आती हो, लेकिन क्या तुमने ये बात समझने की कभी कोशिश की है कि तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है, स्किल है, पोटेंशियल है, शायद उन कई लोगों से बहुत ऊपर और बहुत ज़्यादा हो जिन्हें तुम रीजन, कास्ट, क्रीड के तौर पर ज़रा ऊपर मानती हो. यू नो दिस इज़ ऑल वेरी आई वुड से कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वेज विच इज़ exactly presented, but I hope I'm just able to portray the exact picture of the same. जब एक बार मैंने अपने आप को एक वुमन होने के नाते नहीं, बल्कि मेरे अंदर जो हुनर है उस पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश की, उस दिन रियलाइज हुआ कि भाई दुनिया में आपके टैलेंट, स्किल और हार्डवर्क से बड़ी ताकत तो कुछ है ही नहीं. एंड जिस दिन आपने अपनी ईमानदारी, अपनी ऑनेस्टी को समझना शुरू कर लिया ना बॉस, उस दिन शायद बाकी सारी बातें और सारे पहलू जो है ना वो पीछे छूट जाते हैं. अगर आपको कोई नजर आता है तो आपका असल अक्स और आपकी शख्सियत जो शायद हर बातों से परे सबसे ऊपर उठकर बोलती है. तो लाइफ में अगर कभी डाउट हो तो खुद के सामने एक आईना रखना, वो आईना जो आपकी पहचान आपसे कराए. स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु.

0: Yo, this one is for all the little rock stars.
1: Vacation over हुआ है, अब जाना होगा school. Late morning उठने का बंद होगा rule. Bags on your shoulders, energy रखना full. क्योंकि मिर्ची लेके

0: देखो एक बात मैं साफ साफ कह दूं कि बातें जो हैं वो बहुत हो गई, अब ना थोड़े सीरियस एक्शन की बारी है।
1: मिर्ची अंशु।
0: और हाँ, एक बार जो मैंने कह दिया सो बस कह दिया। अरे भाई, एक बार फिर से जब कतर वर्ल्ड चैंपियनशिप होस्ट करे तो सीरियस एक्शन ना हो तो फिर क्या ही हो। एंड अब की बार बारी है अंडर 17 वॉलीबॉल बॉयज वर्ल्ड चैंपियनशिप की। बिल्कुल ठीक सुना आपने, 19 अगस्त को शुरू हो रहा है महासंग्राम, चलेगा 29 अगस्त तक एट अल अरबी स्पोर्ट्स क्लब एंड लेडीज स्पोर्ट्स हॉल, एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड अबाउट इट। भाई वो सारे मेगा इवेंट्स एंड टूर्नामेंट्स जिनके बारे में हम कभी अखबारों में पढ़ा करते थे, टेलीविजन स्क्रीन में देखा करते थे, आज के डेट में ठीक वो हमारी आंखों के सामने। वाले इतना कहना चाहूंगी, इस टूर्नामेंट में जरूर जाएं, एंट्री जो है पूरी तरह से फ्री है, एंड अपने बच्चों को साथ में लेकर जाएं। देखिए एक पंथ दो काज होगा, बच्चे जो हैं जेन्युइनली रेजिलियंस किसे कहते हैं, हार्ड वर्क किसे कहते हैं, ये सारी बातें सीखेंगे, जुनून के बारे में सीखेंगे, एंड आप जो है कह पाएंगे बड़े आराम से, अरे ये तो वही बच्चे हैं जो हमारी आंखों के सामने खेल कूद के बड़े हुए, क्या पता कल के दिन ओलंपिक्स पहुंच जाएं, किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहुंच जाएं, हम ये क्रेडिट तो ले पाएंगे। जस्ट सेइंग। स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे वर यू नर्वस और एक्साइटेड टू वर्क अलोंग विद योर मॉम, व्हाट वाज द फीलिंग?
2: यू नो, आई वाज वेरी नर्वस, क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, बट नंबर वन फर्स्ट माय को एक्टर ऑन सेट, वो मेरी पहली को एक्टर है, पहली मम्मी नहीं बन सकती. तो मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नर्वस है तो मैं ज्यादा नर्वस हूँ. अगर उनको लाइनें शायद नहीं आते हैं तो मैं कैसे कहूंगी कि उनको नहीं आ रहा है. तो आई वाज लाइक, मुझे ऐसा लगता है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूँ. मैं जब वो पहली बार सेट पे आई, बट तब मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि वो एकदम बिंदास है, शी इज एक्चुअली एग्जैक्टली लाइक मी.
1: आलिया, वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं. चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
3: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
4: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: अरिजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज में व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज। हाय, मेरे दिल के जज्बात जो हैं ये गाने आप तक पहुंचा ही देते हैं कि जरा देखें हम आपको चाहते हैं, इन कितने दिल से चाहते हैं।
1: मिर्ची अंशु।
0: हाँ जी, इतना बता दूं कि जिंदगी में ना खुशी की बहार जो है 101% आने ही वाली है। अब वो कुछ इस तरह से कि पता चल जाए कि सितंबर का महीना आ रहा है, बच्चे जो हैं स्कूल जाएंगे, घर पे औरतें जो हैं आओ बहन चुगली करेगा अभियान चलाएंगी, मतलब बच्चे बिजी, घर वाली खुश, तो आप जो हैं 101% खुश हो ही जाएंगे। नो, जस्ट सेइंग, मेरे घर में अक्सर यही होता है। अगर मैं अपने पापा की बात करूं तो वो बेहद खुश तब होते थे जब उन्हें पता होता था कि मम्मी जो है कहीं ना कहीं लगी हुई है, दिमाग जो है खाली नहीं बैठा है, पूरी तरह से खुश हैं, सुख चैन शांति जो है ना उन्हें लगता था कि हाय उनकी जिंदगी में कूट कूट के आ ही चुकी है। वैसे इतना बता दूं, मम्मी तो पापा का दिमाग कभी पढ़ ना पाई, बहुत कोशिश की, उल्टा ही पढ़ा करती थी। लेकिन कोई है जो आपकी जिंदगी की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर सकती है, एटलीस्ट टेम्पररली? वेल, वो कौन है? वेल, दुनिया की एक ऐसी जानी मानी मेंटलिस्ट की बात करूं या जादूगर की बात करूं जो भाई अपने कला से, अपने स्किल, अपने टैलेंट से सबको मंत्र मुग्ध करना बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, तो भाई उनका नाम है सुहानी शाह। एंड अब तक तो आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कतर के इतिहास में पहली बार 25 सितंबर को कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर पर सुहानी शाह परफॉर्म करने आने वाली है। तो वेल, आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, अगर आपको लगता है कि आपको इस एक्साइटिंग इवेंट का हिस्सा बनना है तो अब टिकट्स जो है आप हर एक प्लेटफॉर्म से कतर के बुक कर सकते हैं। फिर चाहे मैं क्यू टिकट्स की बात करूं, स्नूनू सिटी की बात करूं, टिकट्स आर डेफिनेटली अवेलेबल। अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। 160 रियाल्स में 2 टिकट्स का स्पेशल ऑफर चल रहा है, आप वो भी ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप अपनी टिकट्स इस नूनो सिटी से बुक करते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है आपको 30 रियाल्स का कैश बैक भी मिलेगा। स्नूनो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, स्नूनो सिटी प्लेटफॉर्म पर जाना है एंड बस अपने टिकट्स जो है वो बुक कर ही देना है। बाकी दिमाग के खाने जो है आपके और हमारे सुहानी खोलेंगे, हम तो बैठ के खुलवाने का काम करेंगे जी। बहुत ही प्यारा सा गाना, आशा भोसले जी की आवाज, इतनान सामी की का साथ। एंजॉय। बिंदी का नाम अंशु।
1: कभी

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: यार, मेरी ऑफिस में कोई कुछ काम ही नहीं करता, सब एक दूसरे को काम चिपकाते रहते हैं, क्या करूं मैं?
1: अब ये सोचने का काम भी तू मुझे चिपकाएगा?

only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: वेल कविता सीर की खूबसूरत सी आवाज इन व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज नीरज श्रीधर के साथ बंधु बस तुम्हारे लिए बजाया था तुम्हें थोड़ा एक्टिवेट करने के लिए
1: मिर्ची अंशु
0: भाई साहब एक्टिवेटेड करने की बात करूं तो अब बहुत जल्द इसकी तैयारी जो है आप और हम कर ही लेंगे। नहीं, मैं तो कुछ यही करती हूं कि जैसे ही महीने की 20 तारीख मेरी जिंदगी में आती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि सैलरी वाले दिन यानी कि अच्छे वाले दिन जो है ना मेरे अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए बहुत जल्द आने ही वाले हैं। वैसे बढ़िया है यार, हम जब अपने घर से दूर यहाँ दूसरे घर पर रहते हैं ना, खासकर जितने भी NRIs हैं, ये बात आप और हम बहुत अच्छी तरह से रिलेट करेंगे कि जिंदगी की खुशियाँ जो है ना एक बात पर ज़रूर डिपेंड करने लगती है कि भाई एक्सचेंज का रेट क्या चल रहा है। इमेजिन करें जब सैलरी आती है एक्सचेंज का रेट जो है पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन में ज़रा 5-10 पैसे भी एक्स्ट्रा मिल जाए ना भाई, अपरंपार खुशी होती है। एंड इसे ही कहते हैं छोटी छोटी खुशियों में दरअसल बड़ा सा लाइफ का कोई पैमाना बस ढूंढ ही लेना। चले देखिए, जस्ट इन केस अगर आपके अकाउंट में अच्छे खासे पैसे हैं तो आपका खाता किस तरह से एक्टिवेट होने वाला है IPay एक्सचेंज रेट्स के साथ। हाँ जी, अगर आज ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे IPay मनी पर इंडियन रुपीज 26.21। एंड इसके साथ ही पाकिस्तानी रुपीज की बात करूं 76.18, लंकन रुपीज बजाते हुए डंका 90.55, बांग्लादेशी टका 33.47 एंड साथ ही अगर नेपाली रुपीज की बात करें तो भैया वो है 41.89। मैंने आपको अच्छे खासे एक्सचेंज रेट्स बता दिए। आप जो है अपने अपने घर से छुट्टी बना के वापस आ रहे होंगे, तुम्हारे दोस्त यार आ रहे होंगे, तो जो जो आ रहे हैं ना उनसे यार अपने देश की रेस्पेक्टिव अच्छी वाली मिठाई तो मंगवा दूं, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अब क्या बताएं, कैसे बताएं, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rambala. Burga, burga. Na wiedwa la burga. Milci, burga.
2: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
3: नहीं, कौन बात कर रहा है?
2: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
3: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
2: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
3: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
2: ओ मेरी बात सुन।
3: कौन बात कौन कर रहा है?
2: ओ महेश।
3: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
2: तो दे, जब जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
3: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
2: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
3: अरे तो,
2: जब डर गया था
3: तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
2: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
3: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
2: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा?
3: आदमी फिर वही बात को लेकर आ गया?
2: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
3: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
2: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। सुनो, मैंने तुझसे
3: वाली बातें कर रहा
2: है? मैं कोई पागल वाली बात नहीं कर रही। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
3: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
2: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
3: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
2: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
3: भाई तू है कौन?
2: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
3: हाँ रॉन्ग नंबर है।
2: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा
3: राइट नंबर ले
2: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
3: अरे रॉन्ग नंबर,
2: अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
3: चल काम कर, चल अब।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: ड्रिवन बाय Shackman Trucks, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर। Shackman Heavy Duty Trucks and Boom Trucks, Power That Saves, distributed by Carmel Group. घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिजो मनी कार्ड, अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिजो मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
7: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live.

0: जुबिन नौटियाल की खूबसूरत सी आवाज, क्या टचिंग, क्या खूबसूरत सा गाना है यार। चलिए ये गाना तो आप तक पहुंचा दिया, लेकिन एक काम की बात बेहद इम्पोर्टेंट अब आपको सुना दी जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: हाला। देखो, अगर ये लग रहा है कि अंशु वीकेंड का अभी तक तुमने कुछ प्लान नहीं बताया कि क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। देखो, लाइफ में ना प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी तुम घूमो फिरो, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाओ, बैक टू स्कूल के इतने सारे ऑफर्स चल रहे हैं, डिस्काउंट्स चल रहे हैं, मॉल में जाके शॉपिंग करो, इंडोर एरियाज़ में जाकर नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो, ये सारे काम तो करोगे, लेकिन प्रायोरिटीज़, जैसे कि मैंने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट काम तुम्हारा ये है भाई, सीधा जाना या तो फिर नूनू सिटी में या क्यूटो किड्स में, एंड जाकर सुहानी शाह लाइव इन दुआ, which is scheduled to take place on 25th of September at Qatar National Convention Center. Tickets book करनी है। Early bird discount जो है ना, आपसे कुछ दिन का ही मेहमान है, उसके बाद ना कोई ऑफर आएगा ना प्रमोशन आएगा ना, इतनी बात समझ जाओ कि तुम जो अच्छे खासे इवेंट से अपने आप को चुका दोगे, तो तुम ना चुकाओ, इसलिए चुक चुक के फटाफट से अपनी टिकट्स जो है वो सिक्योर करके आए। सबसे खास बात यह है, इस वक्त अगर आप जाते हैं नूनू सिटी पर, इन दैट केस टिकट्स बुक करने में आपको 30 रियाल्स का कैश बैक भी मिलेगा। बढ़िया है जी, एक ऑफर के साथ दूसरा ऑफर, ये सिर्फ मिर्ची में ही होता है। ऑलराइट देन, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपसे कुछ देर में एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी। वापस लौट के ना कुछ कहानी है जो सुनानी है। एंजॉय बंदी का नाम अंशु।

0: लता मंगेशकर जी की खूबसूरती आवाज एसपी बाला सुब्रमण्यम का साथ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज। एंड सच कहूं यार, आपने भी कहीं ना कभी रियलाइज किया होगा कि जब जब हमने बाला साहब को गाना गाते हुए सुना है, हमें जेन्युइनली ये फील हुआ कि भाई ये तो सलमान खान गा रहे हैं।
1: मिर्ची अंशु।
0: हम आपके यहाँ कौन फिल्म से एक खूबसूरत सा प्यारा सा गाना इस वक्त मैंने आपके बीच पेश किया। एंड क्या गजब ये फिल्म है, क्या खूबसूरत ये गाना, एंड क्या प्यारे लगे यार एक साथ सलमान खान एंड माधुरी दीक्षित। आई जस्ट एब्सोल्युटली लव दिस मूवी। इनफैक्ट आपको पता है, मैं हर एक साल में एक न एक बार ये फिल्म जो है आज भी जरूर देखती हूँ। मैं काफ़ी छोटी थी जब ये फिल्म रिलीज हुई थी। बड़े होने के बाद जब टेलीविजन में बार बार ये फिल्म रीप्ले होती थी, ग्रेजुअली जो है ना इंटरेस्ट उस पर बढ़ा है। आज की डेट में ऐसा लगता है जब जब 90s की नॉस्टैल्जिया में डाइव इन करना है तो भैया ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें जरूर अपनी जिंदगी में शामिल करना है। हाविंग सेड दैट, कुछ गायक ऐसे हैं जिनकी आवाज जो है ना यार पर्टिकुलर एक्टर्स के साथ इतनी ज्यादा रिजेंबल करती है। अगर मैं बात करूं बाला साहब की तो ऐसा लगता था कि भाई 101% ये तो सलमान खान की आवाज है। कुमार सानू की बात करें तो एक दौर था, एक फेज था जब कहीं ना कहीं इनकी आवाज जो है पूरी तरह से शाहरुख खान की आवाज में रिजेंबल करने लगी। फिर यही काम होने लगा उदित जी की आवाज के साथ। एंड आज की डेट में एक ऐसे वर्सेटाइल सिंगर की मैं बात करूं, भाई जब भी वो गाना गाता है ऐसा लगता है जिस एक्टर के लिए गा रहा है ना उसी एक्टर से इसकी आवाज जो है पूरी तरह से मैच होती है, तो वो है अरिजीत सिंह। आई मीन समहाउ आई फील दिस। लेकिन हाँ, शाहरुख खान के साथ सोनू निगम की आवाज जो है काफी ब्लेंड होती थी यार, काफी मर्ज होती थी। आई स्टिल रिमेम्बर दिस थिंग एज वेल। बढ़िया है जी। चलिए मैं आपसे पूछने की कोशिश करती हूँ कि अगर मैं एक एक्टर सिंगर डुओ की बात करूँ, मेट मेल बीट मेल और फीमेल, आपके हिसाब से सबसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा रहा है कि जब जब आपने एक पर्टिकुलर सिंगर को गाते हुए देखा है और उस गाने में वो पर्टिकुलर एक्टर पिक्चराइज हुआ तो आप खुद कन्फ्यूज हो गए कि भाई ये बंदा गायक कब से बन गया, जल्दी से मुझे बताएं। वैसे मेरे दिमाग में कोई है, आयुष्मान खुराना, जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं ऐसा लगता है अरे भाई ये तो गा ही रहे हैं क्योंकि हमने मैक्सिमम गाने वही गाते हैं। आपके लिए वो कौन सा सिंगर एक्टर डुओ है? 5000-1896 5000-1896 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। फहीम अब्दुल्ला की आवाज में अगला प्यारा सा गाना द टाइटल ट्रैक ऑफ फिल्म सैयारा। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Bollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अर्जुन, आलिया के बारे में एक ऐसी बात बताओ जो हमें नहीं पता।
3: मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों ने मुझे फोन करके बोला प्लीज कांग्रेचुलेट आलिया भट्ट फॉर हाईवे। तो आई सेड मेरी भी पिक्चर लगी थी पिछले हफ्ते गुंडे। हाँ हाँ वो है, पर हाईवे में क्या काम किया लड़की ने?
4: पर अर्जुन ने तो हाईवे देखी नहीं है,
3: जैसे
4: तो
3: आलिया ने गुंडे देखी नहीं है। शी डजंट लाइक टू बी एंटरटेन्ड। और एक्चुअली सच बात बताऊं तो जो मैंने उसे सिखाया फाइनली शी इज बीन एबल टू इनकल्केट इट इन हर डेली लाइफ। और इतना डिसिप्लिन लाया है इसकी जिंदगी में मैंने, बात करके समझा के इसके दिमाग में जो चीजें मैंने घुसाई है ताकि ये जिंदगी भर याद रख सके कि एक्टिंग इज प्राइमरी एंड इम्पोर्टेंट।
2: सम रियली इम्पोर्टेंट लाइफ लेसंस अर्जुन कपूर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।

0: कुलदर्शन रावल की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज। हाय मेरे माई ये जन्ना सोना तो जेन्युइनली कोई नहीं, और वैसे आपके जितना भी सोना ना कोई ना है।
1: मिर्ची अंशु
0: अजी सोने आ, फाइनली हफ्ते का वो दिन एंड वो वक्त मेरे लिए तो खासकर आ चुका है जिसका मुझे ना बेसब्री से इंतजार होता है। थर्सडे हैज़ अराइव्ड एंड आई कुडंट बी मोर एक्साइटेड। लेकिन ना यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहूँगी, अक्सर जब भी थर्सडे आता है आपने देखा होगा कि मैं ना एक अलग जोन पे होती हूँ, बड़े खुश वाले मूड में होती हूँ। ये मैंने माना कि वीकेंड्स का मुझे डेफिनेटली वेट होता है, मुझे इंतजार होता है एंड वीकेंड्स में कहीं ना कहीं घर वालों के साथ वक्त ज़्यादा बिताने का वो मौका मिलता है ना, शायद इसलिए मैं ज़्यादा खुश होती हूँ। लेकिन इस वीकेंड के इंतजार में क्या मैं हफ्ते के हर एक दिन को दिल से नहीं जीती हूँ? ये बात बहुत गलत है यार। मैंने ना ये बचपन में ये बात सीख ली थी कि लाइफ में आप जो भी कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, हर एक दिन जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, भाई हर दिन को ऐसे जीना है कि ये ज़िंदगी का एक नया मौका है, नया अवसर है एंड शायद आखिरी भी। यार किसने देखा है कल क्या होगा? एवरीथिंग इज़ सो अनसर्टन अराउंड अस। फ्यूचर की फिक्र करना सही है, प्लानिंग करना ज़रूरी है, लेकिन उसके चक्कर में आज जो प्रेजेंट के तौर पे मिला है उसे खो देना, नहीं यार ये बहुत गलत है। तो इतना कहना चाहूँगी, जिस पल जहाँ आप जिस मोमेंट में है ना उसे दिल से जिए, खुशी से जिए, मज़े मस्ती में जिए। सारा काम होगा और वो हमें ही करना है, लेकिन उस प्रोसेस को एंजॉय करना ये काम भी हमें ही करना है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ अभी फ़िलहाल वीकेंड का आगाज़ मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, आपको भी मबरूक, बहुत बहुत मुबारकबाद। एंड अगर मेरी ये बात अच्छी लगी तो थैंक यू अंशु वाला मैसेज जो है ना बिल्कुल बनता है, वेटिंग फॉर इट। 5000 1896 get connected there। Instagram Mirchi One Kataria Mirchi Anshu। Meanwhile Sanam Puri and Shipra Goel ki awaaz, ye pyara sa gana enjoy। Bandi ka naam Anshu।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
2: मेरा बॉयफ्रेंड बहुत फालतू के खर्चे करता है। इट्स वेरी कंसर्निंग। मैं क्या करूं?
1: अरे तो उसको बोलना तेरे से ब्रेकअप कर ले, अपने आप खर्चा कम हो जाएगा डार्लिंग।
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: बचपन में ना जहां कहीं मुझे ट्विन्स के बारे में पता लगता था कि वो मेरे आसपास एग्जिस्ट करते हैं, आई यूज्ड टू बी रियली एक्साइटेड टू सी देम. सारा जमाना
1: सारा का दीवाना. मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. Yes, the concept of twins ना, it used to be very, very new for me. क्योंकि इतने आम तरीके से हमें twins देखने को नहीं मिलते थे ना. हमें जो देखने को मिलता था 90s की movies में, that was डबल रोल. ट्विंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता था हमको. हमको बस ये पता था कि एक बंदा एक दुनिया में जी रहा है और एक बंदा दूसरी दुनिया में जी रहा है, लेकिन दोनों की शक्लें एकदम सेम है. और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि वो ब्लड रिलेटेड भी नहीं है, ट्विंस भी नहीं है, भाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों की शक्लें एक दूसरे की जैसी बिल्कुल डिटो कट कॉपी पेस्ट है. तभी तो 90s के बॉलीवुड ने ऐसे थोड़ी ना दिल में घर कर लिया था, जहां हमें डबल रोल का कॉन्सेप्ट पहले पता लगा और ट्विंस का कॉन्सेप्ट बाद में पता लगा बॉस. तो चलो फिर आज ना मैंने सोचा है कि मिडडे मोहब्बत में बॉलीवुड की उन फिल्मों के बारे में बात करते हैं जहां पर डबल रोल देखने को मिले थे. और बॉलीवुड में ये कोई बड़ी बात थी कि 90s के दौर में हमें डबल रोल देखने को ना मिले किसी फिल्म में. हर दूसरी तीसरी फिल्म में डबल रोल हुआ ही करता था बॉस. तो आज कौन कौन सी फिल्में आर ऑन द लाइन आपको पता लगेगा इन अ वाइल. लेकिन अभी के लिए मिडडे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कह देती हूँ, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा. आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स ऑल.

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: Hello, Vipin.
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
3: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई तो इतने धीरे के बोल रहा है.
3: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पाड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाजें आ रही है. मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का अभी आग लगा था इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है. आप बताओ कब किया था?
2: अभी पहले किया था.
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन ऑनलाइन की थी.
3: भैया इसका बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार. हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
2: जाना जरूरी है.
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई.
3: अच्छा तो दुबई जाना है
2: भाई, जल्दी जाना है. तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
3: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख निकलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए.
2: हाँ ठीक है ठीक है.
3: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता.
2: आपने सही कह रहे.
3: हाँ देश मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए. भाई साहब एक बात बताऊं?
2: बताओ.
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में. आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मैं. ठीक है मैं रखता हूँ.
2: करवा देना भी है
3: आपसे. मरवाओ के क्या उठ जाएंगे.
2: सॉरी सॉरी सॉरी.
3: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट.
2: ओके ओके.
3: आई लव यू.
2: आई लव यू टू.
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं मुर्गा बना रहा था.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: ये पटा.
7: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं. जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है. पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाए छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े. एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केओस. है जवानी तो इश्क होना है. स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5. डाउनलोड द ऐप नाउ.
8: शी कैन रीड योर माइंड. शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: दो जुड़वा बहनें, जिनमें से एक बिल्कुल सीधी सादी और दूसरी एकदम तेज तरार। एक जो थी वो महलों में रहती थी लेकिन ऐश नहीं करती थी। दूसरी जो थी वो बस्ती में रहती थी लेकिन आराम से ऐश करती हुई रहती थी। और ये जो फिल्म है ये है लाइन में लगी हुई, बिकॉज आज डिस्कस होने वाले हैं बॉलीवुड के डबल रोल्स। Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and the movie that I'm talking about is चालबाज। ये वो चालबाज है which was most talked about in the 90s। श्रीदेवी ने क्या काम किया ना, and as a double role वाला character, उन्होंने और ही धमाकेदार काम किया। मतलब श्रीदेवी में भी एक पर एक मुफ्त। बट यू नो, इस मूवी के पीछे एक बड़ी बढ़िया सी कहानी है और वो कहानी बोनी कपूर से रेलेवेंट है। ऑफ कोर्स एट दैट टाइम बोनी कपूर और श्रीदेवी का कोई खास लेना देना नहीं था, लेकिन एट दैट टाइम अनिल कपूर और बोनी कपूर, इन दोनों ही लोगों को जब पता लगा कि चालबाज सनी देओल के साथ अनाउंस हो गई है, तो ये दोनों पहुंचे सीधे फिल्म मेकर्स के पास। अब हुआ ये था कि ये वो दौर था जब बोनी कपूर और अनिल कपूर फॉर सर्टन रीजंस बिल्कुल फिल्में नहीं ले रहे थे। उन्होंने जितना भी साइनिंग अमाउंट अगर किसी फिल्म का लिया भी था ना, वो भी वापस दे दिया। लेकिन इसी दौरान जब इन्हें चालबाज के बारे में पता लगा, तो ये प्रोड्यूसर्स के पास पहुंचे कि यार अनिल कपूर को साइन कर लो इस फिल्म के लिए और सनी देओल को बाहर कर लो। जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं, सनी देओल ने इतनी अच्छी और हिट फिल्म दी है पाप की दुनिया, उसी के बाद तो हमने सनी देओल को इस फिल्म के लिए लिया है। लेकिन अनिल और बोनी कपूर तो अपने प्राइसेस भी कम करने के लिए तैयार हो गए, ताकि प्रोड्यूसर जो है वो टेम्प्ट हो जाए कि सनी देओल को बाहर कर दें और अनिल कपूर को इन। फिर भी प्रोड्यूसर नहीं माने और उन्होंने डिसाइड किया कि वो सनी देओल को ही रखेंगे इस फिल्म के लिए, क्योंकि उन्होंने सनी देओल के साथ तो 3 फिल्म्स का एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था। सो ही हैड नो इंटेंशंस ऑफ ड्रॉपिंग हिम आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। और यहां अनिल कपूर, जिनको लगा था कि ये फिल्म उनके हाथ में आएगी, वो आई नहीं। एक तरफ अनिल कपूर और बोनी कपूर इस बात को लेकर सैड हो गए थे, और दूसरी तरफ इस फिल्म के डायरेक्टर पंकज पारशर वाज आल्सो सैड वंस अपॉन अ डे ड्यूरिंग द शूट ऑफ दिस फिल्म। हुआ ये था कि वो जो रोहिणी हतंगड़ी जी के साथ सीन नहीं था श्रीदेवी का, जहां पर वो रोहिणी जी के चेहरे को एकदम पोत देती है बुरी तरीके से, वेल उस सीन के टाइम पर द डायरेक्टर पंकज पारशर वाज नॉट वेरी हैप्पी विद द मेकअप जो रोहिणी जी का किया गया था। वो मेकअप वैसा लग ही नहीं रहा था जैसा लगना चाहिए था। तो हुआ ये कि श्रीदेवी ने खुद डिसाइड किया कि वो अपना मेकअप किट लाएंगी और फिर खुद ही रोहिणी जी का फेस जो है उसको पेंट करना शुरू कर देंगी। तो जो हम ये सोच के बैठे थे आज तक कि रोहिणी जी का जो पेंट फेस हुआ हुआ है वो किसी मेकअप आर्टिस्ट ने किया होगा और श्रीदेवी सिर्फ एक्टिंग करी है उनका मेकअप करने की, तो ना जी, वो मेकअप श्रीदेवी ने ही किया था रोहिणी जी के चेहरे पर। इसे कहते हैं श्योर प्रोफेशनल। और सीता गीता की ये रीमेक हम सबके दिलों में घर कर गई थी, नहीं क्या? यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। Mirchi, it's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: अच्छा ये बताओ, एक और एक क्या होते हैं? अगर आपकी बॉलीवुड की नॉलेज अच्छी है तो आप बोलोगे 11, और अगर आपकी मैथ की नॉलेज अच्छी है तो आप बोलोगे 2, लेकिन मैं बोलूंगी जुड़वा।
2: क्योंकि ये कौन बोला?
3: मेरे दोनों बाप, मेरे दोनों बाप।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और मिड डे मोहब्बत पर आज मेरे यारा हम बात कर रहे हैं 90s की वो फिल्में जहां पर डबल रोल थे, यानी कि एक के साथ एक मुफ्त, और उसमें से एक मेरी वन ऑफ द फेवरेट इज जुड़वा। मतलब मैंने 2 तो नहीं देखी, लेकिन मैं 1 में इतनी खोई हुई थी ना कि मुझसे 2 देखी नहीं गई। एक्चुअली बात ही थी, मगर यार मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर जुड़वा में सलमान खान ना होते तो क्या होता। मुझे ये फिल्म शायद इतनी पसंद भी नहीं आती। आई वॉज अ डाई हार्ड सलमान खान फैन एट दैट टाइम। हाँ, लेकिन एट दैट टाइम एक्चुअली ये फिल्म सलमान खान करने भी नहीं वाले थे, ये फिल्म तो गोविंदा करने वाले थे। एंड ही वॉज डूइंग दिस फिल्म विद अ फिल्म मेकर जिनका नाम था नंदू तोलानी, एंड डेविड धवन वॉज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म ऑफ कोर्स। लेकिन सलमान खान को जब इस प्रोजेक्ट के बारे में पता लगा तो उन्होंने गोविंदा से रिक्वेस्ट करी कि यार प्लीज हैंड ओवर दिस प्रोजेक्ट टू मी एंड साजिद नादियाडवाला। गोविंदा ने हाँ कर दी, एंड दिस इज हाउ सलमान एंडेड अप डूइंग जुड़वा। हालांकि डेविड धवन जो थे उनको बड़ा डाउट हुआ करता था कि सलमान इस तरीके की फिल्म पुल आउट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉमेडी की जरूरत थी यार, और बेतहाशा कॉमेडी की जरूरत थी, वो भी डबल रोल के साथ। ये सलमान खान का पहला डबल रोल था यार, तो डेविड धवन थोड़े से नर्वस थे इस चीज को लेकर। लेकिन जब उन्होंने फिल्म का आउटपुट देखा तो वो खुद हैरान थे कि ये सलमान खान ने क्या कर डाला यार। इनफैक्ट सेट्स पर ये मजाक तो क्रू मेंबर्स भी किया करते थे कि कभी कभी सलमान खान अपने कैरेक्टर राजा की एनर्जी के साथ प्रेम के सीन्स की शूट्स कर लिया करते थे, क्योंकि इन दो कैरेक्टर्स, एक टपोरी स्टाइल राजा और दूसरा मासूम सा प्रेम, इन दोनों ही कैरेक्टर्स का जो शिफ्ट होता था वो बड़ा ट्रिकी हुआ करता था। तो ऐसा भी हुआ करता था। हे बाय द वे, आपको एक अंदर की बात बताऊं, इस फिल्म में रंभा जो सीधे साधे सलमान खान के ऑपोजिट हैं, आपको पता है उनकी आवाज उनकी नहीं है, तबू ने उनकी आवाज इस फिल्म में डब की थी। हाँ जी, कमिंग अप मोर इन्फोज ऑन 90s की डबल रोल वाली फिल्में इन अ वाइल। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: नंदीश संधू टीवी एक्टर
3: बालों में क्या लगाते हैं ये बता क्या चले जाइए इतने सुंदर बाल तो हो ही नहीं सकते
4: अपनी आंखें वैसे बहुत सुंदर हैं
3: मैं अपनी आंखों में कुछ नहीं लगाती सिवाय
5: वो अपनी आंखों में खुद ही खो जाता सिवाय सिवाय किसी जुनून के
2: अगर ये अपार शक्ति खुराना और नंदीश संधू और सिद्धांत गुप्ता के बीच की ओ आ मैं आप सुन नहीं पाए मैंने कहा मैं अपनी आंखों में जुनून के अलावा कुछ नहीं लगाती आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: अभी मिर्ची हेल्पलाइन से बात हो रही है।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अरे भाई, मेरी बीवी कहती है मैं जब से मैनेजर बना हूँ तब से खड़ूस हो गया हूँ। घर पे भी ऑफिस की तरह बिहेव करता हूँ, जरा भी रोमांटिक नहीं रहा। अब क्या करूँ भाई मैं?
1: अरे तो सिंपल है ना, ऑफिस में रोमांटिक बनना स्टार्ट कर दे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कितने मजे लिए थे ना जब हमने DD1 पे किशन कन्हैया देखी थी, और कितने मजे लिए थे हमने उस बात पर जब चालू वाला अनिल कपूर जो था वो घर के अंदर था और घर वालों की बैंड बजा रहा था। इसीलिए तो सूट बूट में आया था कन्हैया बैंड बजाने को।
2: क्योंकि ये कौन बोला?
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, पर्दे के ऊपर जो था वो तो हमने बड़े मजे ले लेकर देखा, लेकिन पर्दे के पीछे जो हो रहा था वो ये था कि अनिल कपूर बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे थे अपने इन दोनों किरदारों को एक साथ निभाने के लिए, बिकॉज इट वॉज हार्ड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू कैरेक्टर्स ना, एक किशन जो की इनोसेंट सा बंदा है और एक कन्हैया जो बिल्कुल ही स्ट्रीट स्मार्ट बंदा है और ऐसी की तैसी कर देता है लोगों को। Well, ये कहा जाता है कि वो अपने वॉइस मॉड्यूलेशन प्रैक्टिस किया करते थे, उठने बैठने के तौर तरीके अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस किया करते थे ताकि वो ये डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन सी बॉडी लैंग्वेज किशन की है और कौन सी बॉडी लैंग्वेज कन्हैया की है, और ये सब वो हफ्तों हफ्तों तक करते रहे। राकेश रोशन ने लेटर एक किसी इंटरव्यू में ये बात कही थी कि किशन कन्हैया की सक्सेस ने उन्हें वो कॉन्फिडेंस दिया जिसकी वजह से वो और बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाए, जैसे कि करण अर्जुन एंड देन इवेंचुअली कहूना प्यार है। एंड हे, बाय द वे, इन दोनों ही फिल्मों में राकेश रोशन ने डबल रोल के कॉन्सेप्ट से ही फिल्म बनाई है। आई थिंक उनको ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि डबल रोल का कॉन्सेप्ट डबल पैसे भी कमाकर दिखाता है बॉक्स ऑफिस पर। और ये बात बिल्कुल गलत भी साबित नहीं हुई। हाँ, करण अर्जुन और कहो ना प्यारे दोनों ही ब्लॉकबस्टर हिट थी, है कि नहीं? यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vjet vala burka. Milci, burka.
1: Hello.
2: Hello.
1: Anji.
2: Vivek ji.
1: Anji, bataiye.
2: Vivek ji, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ. Vivek ji, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं.
1: Yeah, yeah, of course.
2: Vivek ji, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं. लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे. अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी. विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज का ना थोड़ा ख्याल रखो यार. मतलब हमें लगता ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज, ग्लास ग्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना. और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये लेते हैं मजे, सारे सारे मजे लेते हैं. लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की. देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए.
1: हाँ, ठीक ही कह रहे हो.
2: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है. अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं.
1: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने. अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने.
2: अच्छा,
1: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता. हमारा घर है, हम जो मर्जी करें.
2: बिल्कुल
1: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखूंगा,
2: थोड़ा ख्याल रखना. मिलते हैं किस दिन?
1: हाँ हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे.
2: क्या हुआ, क्या था भाभी से आपकी बात, क्या हो गई थी?
1: अरे कुछ नहीं यार.
2: नहीं, फिर भी क्या, मतलब काफी चीखी हुई आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
1: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेज की.
2: अच्छा अच्छा.
1: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया.
2: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
1: हाँ, अब इन्होंने चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत.
2: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर.
1: मजे आ रहे हैं,
2: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
1: अरे
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: As a काजोल फैन सिर्फ मैं ही नहीं और भी कई सारे लोग इस फिल्म के लिए बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि ये फिल्म काजोल की शादी के बाद की पहली फिल्म थी कुछ खट्टी कुछ मीठी
2: क्योंकि ये कौन बोला
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा और आज मिडडे मोहब्बत पर उन फिल्मों की चर्चा हो रही है जहां पर डबल रोल देखे गए और उनमें से एक फिल्म थी कुछ खट्टी कुछ मीठी। हालांकि ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कुछ बहुत धमाल नहीं किया लेकिन फिर भी ये फिल्म लोगों को बड़ी पसंद आई है बिकॉज ऑफ द रीजन कि काजोल का कैरेक्टर ही ऐसा था यार, इतना क्यूट कैरेक्टर प्ले किया था उन्होंने इस फिल्म के अंदर। शी प्लेड द रोल ऑफ एक्चुअली टू पीपल, एक टीना और एक स्वीटी। टीना जो कि बहुत ही स्वीट शाय एंड ओबीडियंट थी एंड स्वीटी जो बोल्ड मॉडर्न और एकदम ही आउटगोइंग मुंह फट जैसे कि काजोल हैं। एंड दिस वाज वन ऑफ अ रेयर डबल रोल फिल्म्स क्योंकि दुश्मन में भी उन्होंने डबल रोल प्ले किया था लेकिन बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं। लेकिन हाँ, दिस वाज अ बिग चैलेंज जिनको कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस भी किया और एंजॉय भी किया बिकॉज शी वाज प्लेइंग टू ऑपोजिट पर्सनालिटीज। काजोल की एनर्जी शूटिंग के दौरान इतनी जबरदस्त थी कि वो एक सीन किया करती थी अपना कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम जो था उसको चेंज किया करती थी, हेयर मेकअप सब कुछ बदल जाया करता था और फिर वो अपने ट्विन कैरेक्टर के रोल में आ जाया करती थी ऑल इन द सेम डे। इनफैक्ट क्रू तो इस बात का भी मजाक उड़ाया करता था कि काजोल डबल शिफ्ट्स में काम कर रही हैं, व्हिच वाज नॉट एट ऑल रॉन्ग। एंड इसी के साथ साथ देयर वाज अ लॉट ऑफ फन दैट वाज हैपनिंग ऑन द सेट्स, सो मच सो दैट कि कुछ इमोशनल सीन्स ऐसे थे जहां पर काजोल अपने जोक्स ही मारे जा रही थी जिसकी वजह से होता ये था कि सब हंस दिया करते थे और ऋषि कपूर स्पेशली हंसते ही रहा करते थे और डायरेक्टर को बार बार टेक लेना पड़ रहा था। मैंने कहा ना, काजोल सिंस देन टिल नाउ हैज बीन स्वीटी, द आउटगोइंग बोल्ड एंड मॉडर्न, एंड दैट इज हाउ वी लव काजोल। लाइक, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हालांकि डुप्लीकेट लोगों को बहुत ज्यादा पसंद तो नहीं आई थी, लेकिन मुझे बड़ी पसंद आई थी बिकॉज ऑफ द सोल रीजन यार कि इसमें शाहरुख खान थे, वो भी एक नहीं दो दो।
2: क्योंकि ये कौन बोला?
3: मेरे दोनों बाप, मेरे दोनों बाप।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मिडडे मोहब्बत पर मेरे यारा उन फिल्मों की चर्चा की जा रही है जो 90s अर्ली 2000 के दौर में बनी और डबल रोल लेकर बनी। वो कॉन्सेप्ट जो आजकल तो हमें देखने को ही नहीं मिलता यार, है ना। थोड़ा सा कम ड्रामेटिक हो गए हम लाइफ में, लेकिन एट दैट टाइम बड़े ड्रामेटिक हुआ करते थे यार। और इसी दौर में बनी डुप्लीकेट, जहां पर शाहरुख खान दो रोल्स प्ले कर रहे थे, एक मन्नू का और एक बबलू का। लेकिन मजेदारी वाली बात तो ये थी कि शाहरुख खान ये जो स्विच ऑन और स्विच ऑफ किया करते थे ना एक रोल से दूसरे रोल के अंदर, तो वो सेट्स पर भी यही कहा करते थे कि यार उनके दिमाग में ना दो चिप्स हैं, एक बबलू की और एक मन्नू की, तो वो उन चिप्स को स्विच करते रहते हैं सो दैट उन कैरेक्टर्स को वो प्ले कर पाए। और सेट्स की एक बात है जो क्रू मेंबर्स कहा करते थे कि शाहरुख खान कभी कभी ये भी किया करते थे मजाक मजाक में कि वो जो विलन वाली एनर्जी थी ना उसको पूरे सेट पर कैरी किया करते थे ऑफ द कैमरा, लोगों को चौंकाने के लिए और फिर सबको हंसाने के लिए। और अगर हंसने की बात की जाए तो जूही चावला भी कोई कम नहीं थी। वो शाहरुख खान की बातों पे इतना हंसा करती थी, इतना हंसा करती थी कि भाई एक टाइम तो ऐसा आया कि जब ये गाना शूट हो रहा था ना एक शरारत, उस टाइम पर उनकी हंसी रुकी नहीं रही थी। इवेंचुअली उसकी वजह से हुआ ये कि इस गाने में इतने रीटेक्स दिए गए और लिए गए कि इसका जो स्केड्यूल है वो ही स्ट्रेच हो गया। एक व्हाट्सएप मैसेज और दूसरी हंसी, ये दो ऐसी चीजें जो कहीं भी आ सकती है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: पूजा भट्ट, हमने सुना है कि आपके समय में इतनी पार्टियां आपके टेरेस पे होती थी, एक किस्सा तो सुनाइए यार।
3: But I remember one such party जहां पे मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा आए थे और राहुल बोस मेरे दोस्त थे और वो पहली बार मेरे टेरेस पे मिले थे। तो आई रिमेम्बर आई थिंक 5:30-6 बजे तक मैं वापस आई थी एंड आई सॉ इन अ कॉर्नर मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा और राहुल बोस, तीन एक लाइन में, मतलब ऐसे तीनों सो गए, वन हेड ऑन द अदर पर्सन शोल्डर। सो वो मैंने देखा, मैंने बोला कि वाह क्या कवर बनता है ये।
2: मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा एंड राहुल बोस नीड टू डू अ फिल्म टुगेदर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: सुनील शेट्टी कॉमेडी भी कर सकते हैं,
2: ये बात तो हमको तब पता लगी जब हमने देखी गोपी किशन।
3: क्योंकि ये कौन बोला?
4: मेरे दोनों बाप, मेरे दोनों बाप।
2: और इसी फिल्म से तो ये फेमस डायलॉग आया था जो आज तक भी एपिक लाफ्टर की वजह बन गया है। हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मिड डे मोहब्बत पर 90s के डबल रोल्स की चर्चा हो रही है, जिसमें से सुनील शेट्टी का ये डबल रोल तो किसी को नहीं भूलता यार, एक गोपी का और एक किशन का।
1: बोलो गोपी, टेल टेल।
2: वेल, इससे पहले एक्चुअली सुनील शेट्टी जो थे ना, वो एक्शन हीरो ही थे, तो इसीलिए सबको डाउट था यार कि ये कॉमेडी भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या कॉमिक टाइमिंग थी यार उनकी, मतलब वो मास फेवरेट हो गए थे इस फिल्म के बाद। लेकिन कॉमेडी के साथ साथ इस फिल्म में एक्शन भी था, और एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान हुआ ये था कि सुनील शेट्टी को चोट लग गई थी बुरी तरीके से, लेकिन फिर भी उन्होंने शूटिंग डिले नहीं करी एंड ही कैरीड ऑन विद हिज इंजरी एंड द शूट एज वेल। लेटर ऑन ड्यूरिंग एन इंटरव्यू जब सुनील शेट्टी से पूछा गया कि गोपी का कैरेक्टर उनके कैरेक्टर से ज्यादा मेल खाता है या किशन का, तो उन्होंने किशन के लिए ऑप्ट आउट किया था, क्योंकि ऑफ कोर्स गोपी इतना भोला भाला, दुनिया खा जाए उसको, कौन गोपी बनना चाहेगा उस दौर में भी और आज के भी दौर में। लेकिन सुनील शेट्टी गोपी बने, और क्या गोपी बने। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स ऑल।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La vizba la burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
1: हाँ जी बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
1: तो हुआ कैसे है, मतलब तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
2: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको। 7,500 रुपए का?
1: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख रुपए जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
2: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
1: किस चीज की फीस?
2: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
1: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मतलब इसकी फीस कटेगी नहीं कटेगी?
2: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
1: मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
2: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है। आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
1: ये भी तुम्हें रख लो, ये मैं तुम फोन क्यों कर रहा हूँ?
2: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
1: हम। भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, ये बीच में रख लो हमें ज्यादा।
2: अरे यार
1: आप लूट रहे हो पब्लिक को यार।
2: तो यार ये आपको पहले सोने दे ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी,
1: अरे अभी अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है, जो नाम है लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
2: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
1: तुमने आम इंसान का तुमने बनाया ठीक है ना। हाँ? भैया पैसे भाड़
2: मगा। आप मेरी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए संदीप।
1: हाँ बोलो बोलो
2: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया है।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटाक। शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
4: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट, गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। शाम एक स्टेज और दो कमाल, टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
3: ड्रिवन बाय सुजुकी कतर, बैक टू स्कूल बैक टू ऑफिस, गो विद सुजुकी, चूज फ्रॉम अ रेंज ऑफ सेफ, फ्यूल एफिशिएंट एंड रिलायबल कार्स, टाइम टेस्टेड इन कतर फॉर ओवर 50 इयर्स।
4: विजिट सुजुकी कतर शोरूम बाय तेसी मोटर्स, एयरपोर्ट रोड, दोहा। Presented by Balagna Milk Laban Yogurt. Experience the fresh, creamy taste that Qatar loves. Refreshing every moment with every sip and spoon. Powered by iPay.
5: Laya iPay, best actions reads. Bejo khushiyan paise dono hi ghar pe.
4: Entertainment partner Z5. Double the love, double the trouble. Varun Dhawan brings extra plot twist and extra drama in Hai Jawani To Ishq Hona Hai. Stream it now, only on Z5. Download the app now.
6: Pizza partner Papa John's. Enjoy double delight offer.
4: Two small pizzas at 44, two medium pizzas 66 and two large pizzas at 99 riyals. Papa John's, better ingredients, better pizza. Smile partner Naseem Dental Center. Her smile ho perfect. Sirf Naseem Dental ke saath. Visit kare Muntaza ya Azizia, your trusted smile partner. Adventure Park Partner Jungle Zone. Double the fun, half the price at Jungle Zone Hyatt Plaza. Enjoy 50% off on your favorite rides and games every day until 4 p.m. Don't miss out. Restaurant Partner Chaska.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Meethi Supari,
2: यादों को चिट्ठी।
1: तुम्हें याद करते ही ना एक खुशबू सी आती है जो तुम्हारा पैकेट खोलते ही आया करती थी। भीनी भीनी सी, मीठी मीठी सी। तुम्हें खाना हम बच्चों को वैसे अलाउड नहीं था और अक्सर मैं तुम्हें खरीदती भी नहीं थी, लेकिन कुछ दुनिया की परवाह ना करने वाले क्लासमेट्स के बैग में तुम अक्सर मिल जाया करती थी। और जब कभी कभी तुम्हें चखती थी ना तो मजे और ज्यादा आया करते थे, क्योंकि जो कम होता है उसकी वक्त भी तो ज्यादा हो जाती है। क्या बोलती हो? तुम्हें जुबान पर रखना बुरा माना जाता था और कहते थे कि तुम सेहत को हानि पहुंचाती हो, लेकिन आज मेरी याद में तुम आंखों में पानी पहुंचाती हो, क्योंकि तुमसे जुड़े किस्से बचपन की शैतानी और दोस्तों के किस्सों के याद दिलाते हैं। थी मेरी एक दोस्त जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आया करते थे और सब उससे इसी वजह से दूर भाग जाया करते थे, लेकिन वो मस्त रहने वालों में से थी। तुम अक्सर उसी के पास पाई जाती थी और क्लास में सो कॉल्ड अच्छे बच्चे उसके बारे में खुसुर पुसुर किया करते थे। आज तुम्हें याद करते करते उसकी याद आ गई यार, कि उसके साथ जो होता था वो बॉयकॉट नहीं तो क्या था। मुझे भी बोला जाता था कि तुम अच्छी बच्ची हो, उसके टच में मत रहा करो। आज सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि यार इतनी कम उम्र में ये सब हमें सिखाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन आज मुझे ना इस बात का भी ख्याल आता है कि कितनी हिम्मत थी यार मेरी उस दोस्त में जो ये सब जानकर भी अपनी दुनिया में मस्त रहने की कोशिश किया करती थी। पता नहीं कि वो वाकई में स्ट्रांग थी या स्ट्रांग होने की एक्टिंग किया करती थी। आज तक नहीं पता लगा मुझे इस बात का। स्कूल बदला तो ना उससे टच में रही और ना तुमसे इतनी ज्यादा मुलाकात होती थी फिर, क्योंकि तुम्हें खिलाने वाला कोई था नहीं ना, लेकिन तुम दोनों ही मेरे ख्यालों में तब भी थे और आज भी हो। वो मुस्कुराती हुई और तुम महकती हुई, तुम्हारी भीनी भीनी खुशबू में आज भी खोई हुई तुम्हारी पुरानी दोस्त सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: सोनू निगम, श्रेया घोषाल एंड सलीम मर्चेंट की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म कुर्बान इज कैसेट के साइड ए का पहला गाना.
2: मिर्ची 90s कैसेट.
1: वेल, द ट्रैक जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक गाना नहीं है, दिल का सुकून भी है.
3: शुक्र

ये बात तो सच्ची है कि जो हम आम लोग हैं अपनी आम जिंदगी में वो लव्स कहीं कहीं से ढूंढ कर नहीं ला पाते हैं जो गानों में हमें मिल जाते हैं। नाउ ये गाना इतना खूबसूरत है और इतनी खूबसूरती से ये ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा है कि उसने हमें उस इंसान से मिला दिया जिसे मिलने के बाद हमें सुकून मिलता है। रूह को सुकून मिलने वाले लोग कितने कम मिलते हैं ना जिंदगी में, और जब वो मिल जाए तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने के लिए ये गाना बिल्कुल एप्ट है। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, हमें लव्स नहीं मिल पाते हैं, हमें बस महसूस हो रही होती है कोई बात, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसे लफ्जों में कैसे बयां करें। वहीं ये गाना आता है जो ये कह रहा है कि तेरी बाहों में ये जिस्म खिल गया, तेरी सांसों में चैन मिल गया, कैसे रहें अब हम जुदा। वहीं ये गाना हमारी मदद कर देता है क्योंकि इस गाने में यही तो शुक्रिया अदा किया गया है कि यार किस तरीके का सुकून मिला है एक इंसान से मिलने के बाद कि उसकी बाहों में ये जिस्म खिल गया है, उसकी सांसों में चैन मिल गया है, और कैसे रहा जाए उस इंसान से अब जुदा। तेरे पास हम इतने हुए, तेरे ख्वाब अपने हुए, ऐसे हुए अब हम फिदा। और इसी बात पर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए कहा गया है कि ऐसी उसकी इनायत, मिट गई हर शिकायत, हम पे मेहरबान दो जहां। एंड दिस सॉन्ग इज ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड, जो हमारी जिंदगी में प्यार के आने पर हम महसूस कर पाते लेकिन उसे कह नहीं पाते। तो बस जी, ये गाना आपके दिल की बात को कंप्लीट करते हुए आप ही के लिए लगाती हुई जा रही हूँ, और आपसे कहती हूँ अब कि हम है रहे प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा, और यहाँ के अलावा मुझे मिल जाइएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, 'cause इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: यार, मेरी ऑफिस में कोई कुछ काम ही नहीं करता, सब एक दूसरे को काम चिपकाते रहते हैं, क्या करूं मैं?
1: अब ये सोचने का काम भी तू मुझे चिपकाएगा?

0: गुलाबी साड़ी यानी सूट लाल लाल, ऐसा गाना सुना के आ गया आपका असली मिर्ची लाल। वेल मस्त मौला गौरव इतना ही कहना चाहता है कि क्या आप गर्मी से परेशान हैं, तो मैं एक बात बताऊंगा, शाम के 4:04 होने वाले हैं।
1: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: तो मैं आपसे पूछ रहा था क्या आप गर्मी से परेशान हैं? अगर आप गर्मी से परेशान हैं तो मैं क्या करूं? मैं कौन सा स्विट्जरलैंड में रह रहा हूं, मैं खुद कतर में रह रहा हूं, गर्मी हालत खराब कर रही है, गाड़ी मेरी ओवन तंदूर बन जा रही। मैं तो कह रहा हूं, लोग कहते हैं सोलर चूल्हा खरीदो, वो खरीदने की जरूरत नहीं है। हमारी गाड़ी के बोनट पे इस वक्त आप आराम से ऑमलेट रोटी सेक सकते हो, और अगर थोड़ी देर चावल वावल ले रहे हो पानी में भिगो के रख दो तो वो भी एकदम फर्स्ट क्लास तैयार हो जाएगा। मतलब कुल मिला के बहुत सारे तरीकों से हम पैसे बचा दो सकते हैं इस गर्मी का सही इस्तेमाल करके। वो बात अलग है कि इस मौसम में अगर कोई बेहोश हो जाता है तो उससे लोग यही कहते हैं बेचारा बहुत कमजोर है, इसलिए हम वो भी नहीं होना चाहते। फिलहाल तो बस बड़ा गौरव शुरुआत कर रहा है शाम शानदार के, इतना ही कहेगा। आज की तपिश थोड़ी ज्यादा है, हवाएं जबरदस्त चल रही हैं, तो शाम को ठीक ठाक फील देंगी, मतलब तपने ही वाला देंगी लेकिन देंगी, पर ह्यूमिडिटी आज गायब है। मिर्ची मस्त मौला गौरव के साथ शाम शानदार की शुरुआत। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो
4: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
3: नहीं, कौन बात कर रहा है?
4: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
3: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
4: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
3: है। अरे तो पहले ये तो बता दे कौन है, कौन?
4: ओ मेरी बात सुन।
3: कौन बात कौन कर रहा है?
4: ओ महेश।
3: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
4: तो दे, जब जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
3: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और किस तरह से बोलूंगा?
4: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
3: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
4: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
3: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
4: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा?
3: फिर वही बात को लेकर आ गया?
4: नहीं, मैं कोई बात को लेकर। और महेश मेरी बात सुन, अगर
3: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
4: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तो नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। सुनो, मैंने तो तुझसे
3: वाली बातें कर रहा क्या?
4: मैं कोई पागल वाली बात नहीं कर रही। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
3: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
4: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
3: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
4: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
3: भाई तू है कौन?
4: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
3: हाँ रॉन्ग नंबर है।
4: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा
3: राइट नंबर ले
4: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
3: अरे रॉन्ग नंबर,
4: अरे यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
3: चल काम कर, चल अब।
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
7: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा। फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप। यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस। तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे। TNC supply.
8: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
9: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

0: कतर के लोकल फुटबॉल फैंस कुर्सी की पेटी बांध लो, स्टेडियम में फुटबॉल का मौसम छाने वाला है। यस, लगभग अब से ठीक एक घंटे के बाद कतर स्टार लीग का ओपनर मैच खेला जाएगा। #974 कतर स्पोर्ट्स क्लब वर्सेस अल वकरा के बीच आज लुसैल के आइकॉनिक स्टेडियम में कतर स्टार्स लीग का पहला मैच खेला जा रहा है। ये 2026-27 सीजन आज ही स्टार्ट हो रहा है और ओपनर मैच सीधे आइकॉनिक लुसैल स्टेडियम में, जहां कभी मेसी ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर अपने आप को जम करते हुए एक जबरदस्त माहौल बनाया था, वहां पर होने जा रहा है। एंड बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को तैयारी के साथ अपने अल वकरा को सपोर्ट करना है, क्योंकि अल वकरा जिनको हम सब द ब्लू वेव के नाम से जानते हैं ना, उनके नए कोच चिली से आए हैं। इनका नाम है जोस लुइस सेरा साहब और इनके अंदर अल वकरा पूरी तरह रेडी है। सेरा ठाप इससे पहले टीम को फ्रांस और दोहा में सॉलिड प्री सेशन ट्रेनिंग भी करवा दी है, मतलब टीम तो तैयार है, लेकिन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बड़ी बात यह है कि ये मैच एक शानदार तरीके से खेला जाने वाला है एंड कसल स्पोर्ट्स क्लब क्या अपनी ताकत दिखाकर ब्लू वेव बोले तो वकरा के खिलाफ कुछ अच्छा कर पाएगा। इसके लिए इंतजार कीजिए जब शाम को मैच का किक ऑफ शुरू होगा, उसके बाद खिलाड़ी अपना बेस्ट देंगे। सीजन का ओपनर मैच एंड कतर के लोकल डोमेस्टिक फुटबॉल लीग का ये एक शानदार बिगनिंग सीजन है एंड आई एम श्योर एक शानदार मैच देखने को मिल सकता है। अगर आप फुटबॉल फैन हैं, यू शुड श्योरली बी अ पार्ट ऑफ दिस मैच। 89.6 मिर्ची जीवन इट्स हॉट और जो टीम जीतेगी उसके फैंस जलेबी खिलाएंगे तो हम भी जाएंगे।
1: Sheesh. You know I came in for the cake. Looking the money ain't the only thing I chase down. She ain't see the stars in the race. So now she got in that mood.

उड़दा पंजाब गाना खत्म हुआ और उड़ता प्लेन बोले तो उड़दा हुआ प्लेन उसकी बात करेगा अब। उड़दा जहाज और उड़दा जहाज ये और कोई नहीं बल्कि हमारे कतर में फर्स्ट एंड लार्जेस्ट स्टारलिंक इक्विप्ड वाइड बॉडी फ्लीट है, जिसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये दुनिया की पहली ऐसी एयरलाइन थी जो बिल्कुल स्टारलिंक इक्विप्ड है, यानी कि इंटरनेट की वो कनेक्टिविटी जो आसमान की हजारों फीट की ऊंचाइयों पर भी आपको मिलती है, बोइंग 787-9 एयरक्राफ्ट। अब जितने दिन कतर में उन सब में पिछले 7 महीनों में अब एक तरह से वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट में स्टारलिंक इक्विप कर दिया गया है और इनके नंबर्स पहुंच गए 150, यानी कि 150 ऐसे बोइंग 787-8 और 9 की फ्लीट है जिसमें अब ये स्टारलिंक इक्विप्ड वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को कंप्लीट कर दिया गया है। और यहां पर आपके लिए कह सकते हैं कि एक जबरदस्त तरीके से इंटरनेट की तैयारी कर ली गई है, आपको दुनिया में एक ऐसी सर्विस दी जा रही है जो अनमैच्ड है, मतलब और कोई इसका सामना कर नहीं सकता मिडिल ईस्ट में, एंड अगर अफ्रीका एशिया यूरोप सबकी बात की जाए तो ये भाई एक नया चैलेंज कतर ने खड़ा कर दिया है। फ्री ऑफ चार्ज गेट टू गेट स्टारलिंक वाईफाई और ये अब आपकी जर्नी में आपका साथ दे रहा है। लेकिन कुछ लोगों को इसकी बात की भी टेंशन रहती है कि अब हम बॉस से झूठ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि बॉस पूछेंगे किस फ्लाइट से आ रहे हो, कतर है वैसे, अरे इसमें तो स्टारलिंक मिलता है, तुम मेल का रिप्लाई करते रहना, व्हाट्सएप मैसेज मेरे पढ़ते रहना। जी मस्त मौला गौरव आपके साथ, हमारे बॉस बहुत अच्छे हैं, वो कहते हैं मेरी मेल का रिप्लाई कम से कम 5-6 मिनट के बाद दो, तुरंत देने की कोई जरूरत नहीं है। 89.6 virgin 1 it's hot।

0: 6 decades of excellence in Qatar.
1: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए. मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स. अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो.
2: शी कैन रीड योर माइंड. शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live.

0: कब तक चुप बैठे सूरज चाचू, अब तो हम सबको है बोलना।
1: मस्त मौला गौरव
0: की शादी होती अगर तुम्हारी तो तुमको कोई कंट्रोल करता ना, इतनी गर्मी क्यों करा रहे हो।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: वेदर अपडेट।
0: मुझे तो लगता है कि सूरज चाचू कभी कभी भूल जाते हैं कि हमें यार जुलाई अगस्त खत्म होने को है, अब तो सितंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा तो रहम करो। फिलहाल दिन का मैक्सिमम तापमान आज एक बार फिर से हम सबको ये याद दिला रहा है कि अभी भी गर्मी हमारे कतर में बनी हुई है और ये 43 डिग्री के आसपास पहुंचा। दिन का मिनिमम 32 के अराउंड आएगा एंड कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहते हैं कि अभी वीकेंड पर भी हॉट वेदर कंडीशंस रहेंगी एज पर कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जिनका कहना है कि स्कैटर्ड क्लाउड्स भी होंगे, थोड़े बहुत बादल आएंगे लेकिन किसी काम के नहीं रहेंगे। और 39-41 के बीच टेम्परेचर जहां रेंज करेगा पूरे वीकेंड, वहीं हेजी कंडीशंस भी रहेंगी और थोड़ा ह्यूमिड भी मौसम रहेगा। कुल मिलाकर हमारे और आपके लिए अभी तो वीकेंड पर कोई आउट वाले डोर वाली प्लानिंग तो नहीं है, लेकिन वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब ऐसे ही मौसम रहेगा, हवाएं चल रही होंगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा और हम बीच पार्टी कर रहे होंगे। बस यही याद कर करके 2 महीने और निकल जाएंगे, फिर देखो कितना मजा आएगा। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, bold eye. Only on Mirchi, it's hot.
1: अर्जुन, आलिया के बारे में एक ऐसी बात बताओ जो हमें नहीं पता।
2: मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों ने मुझे फोन करके बोला प्लीज कॉन्ग्रेचुलेट आलिया भट्ट फॉर हाईवे। तो आई सेड मेरी भी पिक्चर लगी थी पिछले हफ्ते गुंडे। हाँ, वो है, पर हाईवे में क्या काम किया लड़की ने?
3: पर अर्जुन ने तो हाईवे देखी नहीं है,
2: जैसे
3: तो
2: आलिया ने गुंडे देखी नहीं है। शी डजंट लाइक टू बी एंटरटेन्ड। और एक्चुअली सच बात बताऊं तो जो मैंने उसे सिखाया फाइनली
0: बॉलीवुड बोल्ड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अर्जुन, आलिया के बारे में एक ऐसी बात बताओ जो हमें नहीं पता।
2: मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों ने मुझे फोन करके बोला प्लीज कॉन्ग्रेचुलेट आलिया भट्ट फॉर हाईवे। तो आई सेड मेरी भी पिक्चर लगी थी पिछले हफ्ते गुंडे। हाँ, वो है, पर हाईवे में क्या काम किया लड़की ने?
3: पर अर्जुन ने

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ।
2: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
1: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live

0: हीरो आप भी हीरो, आपको नहीं पता है वे जुनू गाना सुबह शर्मा की आवाज में हमने यहाँ सुनाया। फिलहाल मिर्ची घड़ी का टाइम बता दें, 5:03 होने को आ गए।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: हाँ तो हम कह रहे हैं कि हीरो तो आप बन गए, भले ही आपको पता नहीं है।
2: #974 the most trending local news of the day.
0: ये हीरो आप बने हैं उस पेपर को बचाने के लिए जो करेंसी के जरिए हमारे और आपके हाथों में आता था, और उस चक्कर में बहुत सारे पेड़ पानी की बर्बादी होती थी। अगर बात करें तो कतर में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम ट्रांजेक्शन ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस साल जुलाई में जो फिगर पहुंचा है उसको ध्यान से सुनिए, कतरी रियाल 106.814 बिलियन, जो कि जुलाई 2025 के कंपैरिजन में इस साल 40% का जंप है। एंड ये सारी ग्रोथ इसलिए हुई है क्योंकि तहवील सिस्टम, जो कि डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट बैंक ट्रांसफर करता है, उसे लोग बहुत यूज कर रहे हैं एंड भरोसा बढ़ता जा रहा है डिजिटल पेमेंट पर। और अब और थोड़ी बड़ी पिक्चर को समझते हैं। जब भी आप पेपर रिसिप्ट या पेपर चेक की जगह फोन से टैप या स्वाइप या ट्रांसफर करते हो ना, तो आप मदर अर्थ को भी बचा रहे हो। यस, और हीरो इसलिए बन रहे हो क्योंकि ग्लोबली हर साल लगभग 4 बिलियन ट्रीज सिर्फ पेपर के लिए काटे जाते हैं। 1 टन पेपर बनाने में 20 पेड़ लगते हैं और हजारों लीटर पानी अलग से। तो डिजिटल रेवोल्यूशन जो आया है, जिस वजह से आप डिजिटलाइज पेमेंट कर रहे हैं, ये लाखों पेड़ों को बचा चुका है और ट्रिलियन गैलन्स ऑफ वाटर को बचा रखा है। यस, तो बस यूं ही करते रहिए इलेक्ट्रॉनिक टैप वाले पेमेंट, स्वाइप वाले पेमेंट, और इसके जरिए आप पेड़ों को कटने से बचाएंगे, पानी की वेस्टेज बचाएंगे और आने वाली जनरेशंस को कुछ अच्छा देकर जाएंगे। आप भी हीरो है ना, मान गए ना। बस मस्त फॉलो करो आपके साथ 89.6 मिर्ची वन पर। एक बार टैप करके कुछ हमको भी पेमेंट भेज दीजिए, जरूरत पड़ रही है। 15 तारीख बीत गई ना, मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana.
2: Rabana.
1: Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hello.
3: कौन?
4: Hello, Vipin.
3: कौन बोल रहा है?
4: आहिस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
3: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
4: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
3: भाई इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
4: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पाड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे हो, सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तो अब क्यों आवाज़ें आ रही है. मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फ़ायदा है. आप बताओ कब किया था?
3: अभी पहले किया था.
4: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
3: ऑनलाइन ऑनलाइन की थी.
4: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार. हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
3: जाना जरूरी है?
4: कहाँ जा रहे हो?
3: दुबई.
4: अच्छा, तो दुबई जाना है
3: भाई? जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
4: नहीं, मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख निकलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए.
3: हाँ ठीक है ठीक है.
4: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता.
3: आपने सही कह रहे
4: हैं. हाँ, देश मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए. भाई साहब एक बात बताऊं?
3: बताओ.
4: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसे ही बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ, पापा है बराबर में. आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
3: मैं तो पागल है क्या?
4: चिल्लाओ मत. ठीक है, मैं रखता हूँ.
3: करवा देना भी है
4: आपसे. मरवाओ के क्या, उठ जाएंगे.
3: सॉरी सॉरी सॉरी.
4: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट.
3: ओके ओके.
4: आई लव यू.
3: आई लव यू टू.
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं मुर्गा बना रहा था.
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
7: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं. जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाए छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े. एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केओस. है जवानी तो इश्क होना है. स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5. डाउनलोड द ऐप नाउ.
8: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live in

अरिजीत सिंह के गाने भी ना FD जैसे हैं। मतलब अपने पास रख लो, जब भी तुमको दिक्कत होती है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट वाला सुकून तो देकर ही जाते हैं। वैसे फिलहाल ये इंटरेस्ट FD ये सब बातें तभी आती हैं जब हमको रेट्स बताने होते हैं। देखिए भाई, मेरे लिए तो बहुत ही कठिनाई भरा समय है। 20 तारीख है, अभी 10 दिन और कैसे भी बिताने हैं, फिर टुंग से मैसेज आएगा और सैलरी क्रेडिट होते ही सब ठीक हो जाएगा। पर अगर आपके पास है पैसे तो घर भेजो, क्योंकि रेट्स कुछ यूं मिल रहे हैं। एक अदरी रियाल के बदले इंडियन रुपीज 26.23, 26 रुपए 23 पैसे भारतीय मुद्रा में। 1 कसरे रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीज 90.57। अगर हम बात करें पाकिस्तान रुपीज की जनाब, वाहिद कतरे रियाल के बदले 76.18 पाकिस्तान रुपीज। तपाई को नेपाल रुपीज का रेट चौदह, 1 कतरे रियाल के बदले 41.89 को रेट चौदाई। हाँ जी राम रो हजूर, 41.89 को रुपाली रुपीज का रेट चौबाई नहीं, घर भेजन लाई राइट टाइम छो। अगर बंधु इसके बाद बांग्लादेशी टाका बात करके दादा, 1 कतरे रियाल के बदले 33.49, तो हाँ जी 33.59 यही टका का रेट है। अगर घर भेजना है तो एकदम राइट टाइम में दाड़ा बाड़ी थी के बेचे दो। मस्त मोलो गौरव आपके साथ 89.6 मिर्ची वन पर। ये था आई पे एक्सचेंज रेट। अगला गाना बादशाह अस्तगिल, पानी पानी हो गए मिर्ची पर। इट्स हॉट।

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे मुंह।

0: आइए आपका इंतजार था।
1: मस्त मौला, मस्त मौला गौरव, मस्त मौला गौरव।
0: हाँ जी, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब ऐसे ही इंतजार करते करते सबका स्वागत करने को तैयार हो गया है। बता दें, अराइवल गाइडलाइंस आ गई हैं क्योंकि बिजिएस्ट अराइवल पीरियड आ चुका है। अगस्त के एंड में सब लौटने वाले हैं और इसके लिए बकायदा दिस अगस्त दोहा इज वेलकमिंग थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज एंड स्टूडेंट्स जो अपनी अपनी छुट्टियां पूरी कर वापस लौट रहे हैं। एंड इसके अकॉर्डिंग ट्रैवलिंग विद द लिटिल वंस के लिए एक बकायदा एयरपोर्ट ने कॉम्प्लीमेंट्री चाइल्ड स्ट्रोलर जो है वो ऑफर किया है, यानी कि वो फैमिलीज जो वापस लौटेंगी और एयरपोर्ट पर उनके साथ बच्चे हैं उनके लिए स्ट्रोलर नेस्ट पे आपको स्ट्रोलर्स मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। एंड बड़ी बात यह है, इसके अलावा शटल बग्गी सर्विसेज भी आपको अलग अलग स्टेशन से मिल जाएंगे। कॉन्कोर्स डी एंड ई से अगर आप बोर्ड कर रहे हैं तो आपको उस पूरे रास्ते पर मिलने वाला है। एंड सीट होगी तो ही जगह मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि बग्गी जा रही है, चार लोग उस पर लदे और पांचवें आप बन के सूटकेस लादे जा रहे हैं, मतलब जगह देख के बैठना। और इसके अलावा हम आपको बता दें, स्कैन एंड गो विद ई गेट्स विल बी अ स्मूदर इमिग्रेशन, तो आप उसी की तरफ जाइएगा और बैगेज रिक्लेम एरिया में भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूं कि अब सबसे बिजिएस्ट टाइम है एयरपोर्ट के लिए, स्पेशली अराइवल्स पर, जहां पर बहुत सारे लोग छुट्टियां मना के अपनी मस्ती से लौट रहे हैं। चाहे बच्चों की बात कर लें, उनको स्कूल जाने का एकदम मस्त मजा है, वहीं अगर फैमिलीज की बात करें तो लेडीज एंड जेंट्स जो लौट रहे हैं वो अपने दोस्तों यारों के साथ वीकेंड पे पार्टी मनाएंगे एंड क्या क्या किया ये बताएंगे, ये सब कुछ होगा। लेकिन उसके लिए आपको आना तो है। एंड हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इतनी सारी फैसिलिटीज हैं कि आपको एकदम सुगम तरीके से अराइवल मिलेगा, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट स्मूथ अराइवल्स ऑन एनी एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सारे स्टाफ मेंबर्स के लिए तालियां हो जाए भाई। ऑल द बेस्ट, मिर्ची इट्स हॉट।

वेकेशन ओवर हुआ है अब जाना होगा स्कूल, लेट मॉर्निंग उठने का बंद होगा रूल, बैग्स ऑन योर शोल्डर्स, एनर्जी रखना फुल, क्योंकि मिर्ची लेके

शाहरुख खान, क्या लगे थे इस गाने में करीना कपूर के साथ यार। अब पिक्चर चाहे जैसी भी रही हो, लेकिन इस गाने की वजह से हम हमेशा इस पिक्चर को याद रखते हैं, रा वन। वेल, कुल मिलाकर बस इतना ही कहना चाहता है मस्त मौला गौरव। एक अन हंसिका अय्यर की आवाज में गाना खत्म हुआ, लेकिन मैं आपके साथ आया हूँ कि वीकेंड अब आने को है और वीकडेज खत्म हो रहे हैं, तो ऐसे में इंजॉय कीजिएगा। एंड हमारे कतर के बहुत सारे मॉल्स हैं जो सुबह सवेरे वॉक चैलेंज भी चला रहे हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं आप। और तो और मैं कहूंगा, अगर वीकेंड पे दोस्तों यारों के साथ बैठ गए और सारे दोस्त धीरे धीरे वापस आना शुरू हो चुके हैं, तो प्लान कर लो 25 सितंबर QNCC में द मेंटल सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जहां पर वो मैजिक देखोगे आप जो इससे पहले आपने सिर्फ टीवी पे देखा है या इंस्टा पे स्क्रॉल करते हुए आया है। ये रील्स नहीं, ये रियल में आपके सामने होंगी। एंड क्या पता अगले शिकार आप हो जाए और आप मन में किसके बारे में क्या सोचते हैं ये सबको पता लग जाए। तो चलो जी, आई विल वेट कि आप और हम एक साथ मिलेंगे और सुहानी के साथ बहुत मजेदार ये शाम बीतने वाली है। एंड सुहानी अकेले नहीं, उनके साथ म्यूजिक ड्यूओ चरण आशी भी आ रहे हैं जो परफॉर्म करेंगे, हम सबको झुमा भी देंगे। तो एंटरटेनमेंट का तड़का, मेंटलिस्ट वाला एकदम तड़कता भड़कता शो, ये सब कुछ 25 सितंबर QNCC, तो मिस मत करो। जितनी जल्दी हो सके अपनी टिकट्स लो। एंड SCTSNOOZY पर तो एक बकायदा ऑफर मिल रहा है, अगर आप टिकट बुक करते हो तो आपको 30 कतरी रियाल का कैशबैक भी मिल जाएगा। अब बोलो इससे ज्यादा फायदे का सौदा क्या हो सकता है कि अर्ली बर्ड में वैसे ही डिस्काउंटेड प्राइस और ऊपर से SCTSNOOZY पर आपको 30 कतरी रियाल का ये वाला कैशबैक भी मिल जाए, तो लॉटरी लॉटरी है दोस्त। फटाफट टिकट बुक करते रहो और मस्त मौला गौरव को थैंक यू कहो जो हमेशा ऐसी अच्छी बातें याद दिलाता है जहां पर आपके लिए बचत ही बचत हो। वेल, इस उम्मीद के साथ कि पूरे वीकेंड एंजॉय करोगे, लूंगा अलविदा, लौटूंगा सैटरडे की शाम शानदार में ढेर सारी बातें लेकर मिर्ची पर। इट्स हॉट, टाटा बाय बाय हबीबी, मा सलामा।

0: इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिडू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। टीएनसी अप्लाई।
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar, this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: 6 decades of excellence in Qatar. जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स। है जवानी तो इश्क होना है, स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ। ड्रिवन बाय Shackman Trucks, zabardast power aur cleaner energy ka naya chapter. Shackman heavy duty trucks and boom trucks, power that saves. Distributed by Carmel Group.
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.
2: Uploading. System upload complete. Club Mix. DJ Richard. Only on Radio Mirchi. Club Mirchi.

0: Club Mirchi on Radio Mirchi. We'll be right back after these messages.
1: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा. फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क. रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइंस हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप. यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस. तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, ईरिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे. TNC Supply.
2: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
3: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स. द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

बारिश का मौसम है, कभी रोमांटिक कभी ड्रामेटिक, लेकिन प्लेलिस्ट हमारी सिर्फ फैंटास्टिक, सो डोंट टच दैट डायल, क्योंकि अभी पार्टी का लेवल और भी हाई होने वाला है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयंतिका विथ यू एंड दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर, क्लब मिर्ची।

0: Club Mirchi on Radio Mirchi. We'll be right back after these messages.
1: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambala. Murga, murga. Navid wala murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ।
3: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
2: तो हुआ कैसे है, मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
3: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको। 7,500 रुपए का?
2: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख रुपए जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
3: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
2: किस चीज की फीस?
3: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
2: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने मेरे इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
3: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
2: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
3: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है। आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
2: ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
3: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे हम।
2: भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, ये बीच में रख लो हमें ज्यादा।
3: अरे यार
2: हो गया, आप लूट रहे हो पब्लिक को यार।
3: तो यार ये आपको पहले सोचने देना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो काम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी,
2: अरे अभी अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है जो नाम लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
3: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
2: तुमने आम इंसान तुमने बनाया ठीक है ना। हाँ? भैया पैसे
3: भाड़ मेरी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए संदीप।
2: हाँ बोलो बोलो
3: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
5: इट्स हॉट।
4: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट, गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम एक स्टेज और दो कमाल, टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

0: सिंस डेकेड्स ऑफ एक्सलेंस इन कतर। घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन,
2: Club Mirchi.

बारिश का मौसम है, कभी रोमांटिक कभी ड्रामेटिक, लेकिन प्लेलिस्ट हमारी सिर्फ फैंटास्टिक, सो डोंट टच दैट डायल, क्योंकि अभी पार्टी का लेवल और भी हाई होने वाला है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंतिका विद यू एंड दिस इज द

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rambana. Burka, burka. Na vidva la burka. Milci, burka.
1: Hello.
2: Hello, bhai. Wrong number se baat kar raha hai. Wrong number se.
1: Nahi, kaun baat kar raha
2: hai? Pehle bata, wrong number se baat kar raha hai.
1: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
2: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई। रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
1: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
2: ओ मेरी बात
1: कौन
2: सुन।
1: बात कौन कर रहा है?
2: ओ महेश।
1: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
2: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
1: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
2: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
1: अरे तो
2: जब डर गया था,
1: तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
2: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
1: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
2: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
1: फिर वही बात को लेकर आ गया।
2: नहीं, मैं कोई बात को लेकर। और महेश मेरी बात सुन, अगर
1: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
2: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझसे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू में
1: वाली बातें कर रहा है क्या?
2: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहा। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
1: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
2: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
1: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
2: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
1: भाई तू है कौन?
2: नहीं मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
1: हाँ रॉन्ग नंबर है।
2: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था
1: रॉन्ग ले रहा
2: राइट नंबर ले ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
1: अरे रॉन्ग नंबर, अरे जा,
2: बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू
1: यार।
3: रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: मिर्ची घड़ी में रात के 8 की पारिंग विद क्लब मिर्ची,
4: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल।

चीज कॉमन है, दोनों लैंग्वेज नहीं इमोशन समझते हैं. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑल योर दिगा विद यू टुनाइट ऑन क्लब मिर्ची. तो चाहे आप मेसी फैन हो, हालन फैन हो या बस गुड म्यूजिक का फैन, अगला गाना सबके लिए है.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: हाँ, मुझे रनिंग शूज चाहिए और इसके लिए मैंने इतने वीडियोस देखे कि वीडियो देखते देखते थक गया। समझ नहीं आता क्या करूँ।
2: अरे तो अब फुट मसाज के वीडियो देखना, थकान दूर हो जाएगी और क्या।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
4: Ladies and gentlemen.

वंस अगेन, फुटबॉल का रूल सिंपल है, 90 मिनट्स में कुछ भी हो सकता है, और वीकेंड का रूल एक अच्छा गाना पूरा मूड बदल सकता है, एंड दैट इज व्हाट वी डू ऑन क्लब मिर्ची. सो कीप डांसिंग, कीप स्माइलिंग, वी जस्ट गॉट स्टार्टेड. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची, ऑल योर ओन थिंग आउट विद यू टुनाइट.

वीकेंड रेजोल्यूशन, लेस स्ट्रेस, मोर बेस, ऑफिशियल मेल्स मंडे देखेंगे, आज सिर्फ प्लेलिस्ट, सब पार्टी प्लान्स डिस्कस होगा ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

स्क्वाड में एक फ्रेंड होता है जो हर गोल पे कमेंटरी करता है और एक जो सिर्फ रील्स बनाता है। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो मुझे बताना है तो आ जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे ओयोंतिका AYANTIKA। आई एम अ बॉन्ग एंड हियर्स योर नेक्स्ट सॉन्ग ऑन क्लब मिर्ची।

Welcome back. बारिश की ठंडी हवा, फेवरेट पीपल और लाउड म्यूजिक. Honestly, इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो शूज पहन लो या स्लीपर्स, बस ग्रूव करना मत रोकना. DJ Richard Mirchi, on your host for the night on Club Mirchi.

outside और mood full sunshine. बारिश को excuse मत बनाओ, उसको background effect बना दो. Club Mirchi जा रही है with DJ Richard and Mirchi और योंतिका.

शूट आउट हो या अंताक्षरी, प्रेशर सब जगह होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ मिस भी किया तो अगला गाना आपको फिर डांस करवा देगा। ऑफ कोर्स ऑन क्लब मिर्ची, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो, विद यू टुनाइट।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

हेलो पार्टी स्क्वाड, गोल सेलिब्रेट करने का एक तरीका स्टेडियम में होता है और दूसरा डांस फ्लोर पे. हम सेकंड वाला चूज करते हैं. ऑन क्लब मिर्ची, रेडी फॉर अनदर बैंगर. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची, ऑल योर टेक आउट टुगेदर बेबी.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, sakka bana. Ya bana. Murga, murga. Nafiyat wala murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Kaun?
3: Hello, Vipin.
2: कौन बोल रहा है?
3: आहिस्ता मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
3: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई तो इतने धीरे के बोल रहा है.
3: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता है पावड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्या, क्यों आवाज आ रही है? मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का. अभी आग लगा दो इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
2: अभी पहले किया था.
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन की थी.
3: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से और हमारी आवाज से. अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कह दिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
2: जाना जरूरी है.
3: कहाँ जा रहे हो?
2: नहीं, दुबई.
3: अच्छा, तो दुबई जाना है.
2: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
3: नहीं, मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए. हो सकता है कल ही मिल जाए.
2: हाँ ठीक है ठीक है.
3: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ाते था.
2: आपने कब से ही कह रहे
3: हैं? हाँ, तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए. भाई साहब एक बात बताऊं?
2: बताओ.
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा? जैसे रात में बात करते हैं.
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत. ठीक है मैं रखता हूँ.
2: करवा देना भी है आपसे.
3: मरवाओ के क्या, उठ जाएंगे.
2: सॉरी सॉरी सॉरी.
3: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट.
2: Okay. I love you too.
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं मुर्गा बना रहा था.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची. It's hot.
6: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are gonna go. We are gonna go on a ride.
0: Club Mirchi.

मेमोरी होता है और हर वीकेंड का एक एंथम हो सकता है अगला गाना वही बन जाए आपके लिए। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका एक साथ, दिस इज क्लब मिर्ची बेबी।

वीकेंड ऑफिशियली तब शुरू होता है जब वॉल्यूम बटन ऊपर जाता है, तो स्पीकर्स रेडी रखिए क्योंकि क्लब मिर्ची की पार्टी अभी तो बस वार्म अप ही कर रही थी। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योम टुगेदर।

सबसे बड़ी ट्रॉफी क्या है पता है? मंडे को ये कह पाना, बॉस वीकेंड वाज वर्थ इट। तो छोड़ो सारी टेंशन और चलो नेक्स्ट ट्रैक के साथ सेलिब्रेशन कंटिन्यू करते हैं ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अर्जुन आलिया के बारे में एक ऐसी बात बताओ जो हमें नहीं पता।
4: मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों ने मुझे फोन करके बोला प्लीज कांग्रेचुलेट आलिया भट्ट फॉर हाईवे। तो आई सेड मेरी भी पिक्चर लगी थी पिछले हफ्ते गुंडे सर। हाँ हाँ वो है, पर हाईवे में क्या काम किया लड़की ने?
5: पर अर्जुन ने तो हाईवे देखी नहीं है,
4: जैसे
5: तो
4: आलिया ने गुंडे देखी नहीं है। शी डजंट लाइक टू बी एंटरटेन्ड। और एक्चुअली सच बात बताऊं तो जो मैंने उसे सिखाया फाइनली शी इज बीन एबल टू इनकल्केटेड इन हर डेली लाइफ। और इतना डिसिप्लिन लाया है इसकी जिंदगी में मैंने, बात कर करके समझा समझा के इसके दिमाग में जो चीजें मैंने घुसाई है ताकि ये जिंदगी भर याद रख सके कि एक्टिंग इज प्राइमरी एंड इम्पोर्टेंट।
3: सम रियली इम्पोर्टेंट लाइफ लेसंस अर्जुन कपूर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल।
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boldal. Only on Mirchi, it's hot.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: मेरा बॉयफ्रेंड बहुत फालतू के खर्चे करता है, इट्स वेरी कंसर्निंग। मैं क्या करूं?
1: अरे तो उसको बोलना तेरे से ब्रेकअप कर ले, अपने आप खर्चा कम हो जाएगा डार्लिंग।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

बैक वंस अगेन. फुटबॉल का रूल सिंपल है, 90 मिनट्स में कुछ भी हो सकता है. और वीकेंड का रूल एक अच्छा गाना पूरा मूड बदल सकता है. एंड दैट इज व्हाट वी डू ऑन क्लब मिर्ची. सो कीप डांसिंग, कीप स्माइलिंग. वी जस्ट गॉट स्टार्टेड. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची, ऑल योर ओन थिंग आउट विद यू टुनाइट.

Welcome back. बारिश की ठंडी हवा, फेवरेट पीपल और लाउड म्यूजिक. ऑनेस्टली इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो शूज पहन लो या स्लिपर्स, बस ग्रूव करना मत रोकना. DJ Richard Mirchi, on the night on Club Mirchi.

एंड क्लब मिर्ची में एक ही स्ट्रेटजी चलता है, गुड वाइब्स ओनली. मैच का स्कोर जो भी हो, टुनाइट एवरीवन इज विनिंग बिकॉज द प्लेलिस्ट इज एब्सोल्युटली ऑन फायर थैंक्स टू डीजे रिचर्ड. आई एम योर होस्ट मिर्ची ऑन योर ओन थिंग एंड दिस इज क्लब मिर्ची. द साउंड ऑफ द फ्यूचर इज

वीकेंड की बारिश वाली रात और दोस्तों का साथ, बस एक चीज मिसिंग है, थोड़ा और वॉल्यूम। तो स्पीकर्स को काम पे लगाइए, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन द गाइस इन फुल पावर।

Your body. Enter the simulation.

ओयोंटिका की दुनिया का हिस्सा बनना है तो कम से हाई टू बी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स. नाम की स्पेलिंग है AYANTIKA. रेडियो के बाहर भी स्टोरीज, फन मोमेंट्स, बिहाइंड द माइक लाइफ और लोड्स ऑफ लव आपका वेट कर रहे हैं. लेट्स कनेक्ट. दिस इज क्लब मिर्ची.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: पूजा भट्ट, हमने सुना है कि आपके समय में इतनी पार्टियां आपके टेरेस पे होती थी, एक किस्सा तो सुनाइए यार।
4: पर आई रिमेम्बर वन सच पार्टी जहां पे मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा आए थे और राहुल बोस मेरे दोस्त थे और वो पहली बार मेरे टेरेस पे मिले थे। तो आई रिमेम्बर आई थिंक 5:30-6 बजे तक मैं वापस आई थी एंड आई सॉ इन अ कॉर्नर मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा और राहुल बोस, तीन एक लाइन में, मतलब ऐसे तीनों सो गए, वन हेड ऑन द अदर पर्सन शोल्डर। सो वो मैंने देखा, मैंने बोला कि वाह क्या कवर बनता है ये।
3: मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा एंड राहुल बोस नीड टू डू अ फिल्म टुगेदर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
0: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अपलोडिंग, system upload complete.
6: Mirchi with DJ Richard, only on Radio Mirchi.

हेलो पार्टी स्क्वाड, गोल सेलिब्रेट करने का एक तरीका स्टेडियम में होता है और दूसरा डांस फ्लोर पे। हम सेकंड वाला चूज करते हैं। ऑन क्लब मिर्ची, रेडी फॉर अनदर बैंगर। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑल योर थिंग।

ਨਜਾਵੇ ਕੋਈ ਖਾ।

छोटा सा रिमाइंडर, बारिश में रोड्स स्लिपरी होते हैं, स्पीड थोड़ी कम रखिए, हेडलाइट्स ऑन रखिए, सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। वीकेंड तभी परफेक्ट है जब आप और आपके अपने सेफली घर पहुंच जाए। माइंड द रोड्स एंड वी माइंड द म्यूजिक ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल।

Jaan sab jaan karo, jaan sab jaan karo, jaan sab jaan karo.

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

गलती जरूर कीजिए, लेकिन अगर ड्रिंक किया है तो स्टीयरिंग व्हील को टच भी नहीं करना। लीजिए रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंटिक आपके साथ ऑन क्लब मिर्ची। कैब बुक कीजिए, डेजिग्नेटेड ड्राइवर चूज कीजिए या किसी दोस्त का हेल्प लीजिए। एक स्मार्ट डिसीजन पूरी रात को हैप्पी एंडिंग देता है, रिमेम्बर दैट।

दोस्तों, अगर आप घर पे हो तो लिविंग रूम को स्टेडियम बना दो, और अगर ड्राइव कर रहे हो तो गाड़ी के स्पीकर्स को कॉन्सर्ट बना दो। वीकेंड सिर्फ दो दिन का होता है, एनर्जी अनलिमिटेड होनी चाहिए। दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। लेट्स रोल इट।

आइए, टीम वर्क विंस। और वीकेंड भी तभी यादगार बनता है जब अपनी गैंग के साथ हंसी, गाने और मेमोरीज शेयर की जाए। सो कीप द वाइब्स हाई एंड कीप लिसनिंग टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंटिका।

बैक वंस अगेन. फुटबॉल का रूल सिंपल है, 90 मिनट्स में कुछ भी हो सकता है. और वीकेंड का रूल एक अच्छा गाना पूरा मूड बदल सकता है. एंड दैट इज व्हाट वी डू ऑन क्लब मिर्ची. सो कीप डांसिंग, कीप स्माइलिंग, वी जस्ट गॉट स्टार्टेड. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर ओन थिंग.

होता है जो हर गोल पे कमेंट्री करता है, और एक जो सिर्फ रील्स बनाता है। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो मुझे बताना है, तो आ जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे ओयोंतिका AYANTIKA। आई एम अ बॉम्ब एंड हियर्स योर नेक्स्ट सॉन्ग ऑन क्लब मिर्ची।

बस दोस्तों आज की पार्टी यही फुल टाइम विसल लेती है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका आपके साथ, फुटबॉल का जोश, वीकेंड का स्वैग और म्यूजिक की ये एनर्जी हमेशा साथ रखिए। सेफ रहिए, रिस्पॉन्सिबली सेलिब्रेट कीजिए, बारिश का मजा लीजिए और याद रखिए, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। अगले वीकेंड फिर मिलेंगे और फिर मचाएंगे फुल ऑन हंगामा। टिल देन कीप द म्यूजिक लाउड, द स्माइल्स लाउडर। दिस इज योर होस्ट मिर्ची ओयोंतिका साइनिंग ऑफ फॉर द वीकेंड। टाटा।

बारिश का मौसम है, कभी रोमांटिक कभी ड्रामेटिक, लेकिन प्लेलिस्ट हमारी सिर्फ फैंटास्टिक, सो डोंट टच दैट डायल, क्योंकि अभी पार्टी का लेवल और भी हाई होने वाला है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका विद यू एंड दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर क्लब मिर्ची।

0: मिर्ची मिर्ची मिर्ची।
1: हेलो पीपल, वीकेंड फाइनली नॉक कर रहा है और क्लब मिर्ची ऑफिशियली ऑन हो चुका है। बाहर बारिश की बूंदे, अंदर बेस की धूम, तो वॉल्यूम फुल करो, मूड कूल करो और डांस फ्लोर हो या बोर्डम, गाड़ी हो या बालकनी, आज रात सिर्फ एक ही रूल है, नो रूल्स ओनली गुड वाइब्स। मैं हूँ मिर्ची ऑयोंटिक एंड विद मी इज डीजे रिचर्ड। अगले कुछ घंटों तक पार्टी नॉन स्टॉप, हिट्स बैक टू बैक और वर्ल्ड कप फीवर के साथ बारिश वाली मस्ती भी। वेलकम टू क्लब।

वीकेंड का सीन सिंपल है, फोन साइलेंट, वरीज ऑफलाइन और म्यूजिक फुल वॉल्यूम, बारिश को बैकग्राउंड डांसर बना दो और खुद बन जाओ टुनाइट्स मेन कैरेक्टर। क्लब मिर्ची इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योंतिका, लेट्स गो।

एक चीज कॉमन है, दोनों लैंग्वेज नहीं इमोशन समझते हैं. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑल ऑन द गो विद यू टुनाइट ऑन क्लब मिर्ची. तो चाहे आप मेसी फैन हो, हालन फैन हो या बस गुड म्यूजिक का फैन, अगला गाना सबके लिए है.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
3: हाँ जी, बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
3: तो हुआ कैसे है? मतलब बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
2: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको।
3: कितने का ड्राफ्ट है मेरा?
2: 7,500 रुपए का।
3: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे।
2: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
3: किस चीज की फीस?
2: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
3: तो भाई साहब, ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
2: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
3: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है
2: क्या? सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं सर, करोड़ों की मशीन है। आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं। उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं। 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है। और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे, क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
3: ये भी तुम्हें देख लो, ये तुम फोन क्यों कर रहा हो?
2: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे।
3: भाई आप ही रखो यार, आप हमेशा
2: रख लो,
3: या बीच में रख लो हमेशा।
2: अरे यार,
3: पब्लिक को यार।
2: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा, ठीक है? हाँ संदीप जी।
3: अरे अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है, जो नाम लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
2: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
3: तुमने आम इंसान तुमने बनाया, ठीक है ना?
2: हाँ?
3: भैया पैसे भाड़ में गए।
2: आप मेरी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए संदीप।
3: हाँ बोलो बोलो
2: संदीप। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।
6: क्लब मिर्ची।

बैक वंस अगेन. फुटबॉल का रूल सिंपल है, 90 मिनट्स में कुछ भी हो सकता है. और वीकेंड का रूल एक अच्छा गाना पूरा मूड बदल सकता है. एंड दैट इज व्हाट वी डू ऑन क्लब मिर्ची. सो कीप डांसिंग, कीप स्माइलिंग, वी जस्ट गॉट स्टार्टेड. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची, ऑल योर ओन थिंग आउट विद यू टुनाइट.

वीकेंड रेजोल्यूशन, लेस स्ट्रेस, मोर बेस, ऑफिशियल मेल्स मंडे देखेंगे. आज सिर्फ प्लेलिस्ट, सब पार्टी प्लान्स डिस्कस होगा ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका.

और स्क्वाड में एक फ्रेंड होता है जो हर गोल पे कमेंटरी करता है और एक जो सिर्फ रील्स बनाता है। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो मुझे बताना है तो आ जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे Ayontika AYANTIKA. I'm a bong and here's your next song on Club Magic.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: नंदीश संधु टीवी एक्टर
4: बालों में क्या लगाते हैं ये बता के आप चले जाइए इतने सुंदर बाल तो हो ही नहीं सकते
5: आपकी आंखें वैसे बहुत सुंदर हैं
4: मैं अपनी आंखों में कुछ नहीं लगाती सिवाय जुनून
5: अपनी आंखों में खुद ही खो जाती सिवाय सिवाय किस जुनून के
3: अगर ये अपार शक्ति खुराना और नंदीश संधू और सिद्धांत गुप्ता के बीच के ओ आ में आप सुन नहीं पाए मैंने कहा मैं अपनी आंखों में जुनून के अलावा कुछ नहीं लगाती आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल्डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन

Welcome back. बारिश की ठंडी हवा, फेवरेट पीपल और लाउड म्यूजिक. ऑनेस्टली इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो शूज पहन लो या स्लिपर्स, बस ग्रूव करना मत रोकना. DJ Richard Mirchi, on your host for the night on Club Mirchi.

साइड और मूड फुल सनशाइन. बारिश को एक्सक्यूज मत बनाओ, उसको बैकग्राउंड इफेक्ट बना दो. क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका.

मॉनसून की रात नियॉन लाइट्स और फेवरेट गाने, इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो हो ही नहीं सकता। सो वेयर एवर यू आर वाइबिंग, बालकनी, टेरेस या लॉन्ग ड्राइव, क्लब मिर्ची इज योर परफेक्ट पार्टी पार्टनर। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका विथ यू, लेट्स गो।

Rainy nights are made for hot coffee, good company and even better music. अगर कंपनी नहीं है टेंशन किस बात की, क्लब मिर्ची है ना, डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके पक्के दोस्त. Let's go baby.

लाइफ को कभी कभी शफल पे छोड़ देना चाहिए, पता नहीं अगला सरप्राइज एक फेवरेट गाना हो या एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी। एंजॉय एवरी बीट विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन क्लब मिर्ची।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

हेलो पार्टी स्क्वाड, गोल सेलिब्रेट करने का एक तरीका स्टेडियम में होता है और दूसरा डांस फ्लोर पे। हम सेकंड वाला चूज करते हैं। क्लब मिर्ची रेडी फॉर अनदर बैंगर। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑल योर टिकट।

जाए कोई खाही शिवा की ओ साकी साकी रे साकी साकी आपस आवे न जाए कोई खाही शिवा।

छोटा सा रिमाइंडर, बारिश में रोड्स स्लिपरी होते हैं, स्पीड थोड़ी कम रखिए, हेडलाइट्स ऑन रखिए, सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। वीकेंड तभी परफेक्ट है जब आप और आपके अपने सेफली घर पहुंच जाए। माइंड द रोड्स एंड वी माइंड द म्यूजिक ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल।

Jaan sab ja karo, jaan sab ja karo, jaan sab ja karo.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हेलो
2: कौन
3: हेलो विपिन
2: कौन बोल रहा है
3: इस्ता मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था
2: हाँ पासपोर्ट अप्लाई किया था
3: आहिस्ता बोलो कब अप्लाई किया था आपने
2: भाई तो इतने धीरे के बोल रहा है
3: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से पासपोर्ट जिसका बन रहा होता है पावड़ के फेंक देते हैं 15 रिजेक्ट कर चुके समझ गए इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था कहते इधर देश का पासपोर्ट का अभी आग लगा दो इसमें इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो आप क्या फायदा है आप बताओ कब किया था
2: पहले किया था
3: अच्छा अच्छा आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी आप खुद आए थे
2: ऑनलाइन की थी
3: भैया इस तो बोल अभी करवट ली है तेरी आवाज से और हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे कौन है मैंने कहते कोई बात नहीं आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके
2: जाना जरूरी है
3: कहाँ जा रहे हो
2: दुबई
3: अच्छा तो दुबई जाना है
2: भाई जल्दी जाना है तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो
3: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए हो सकता है कल ही मिल जाए
2: ठीक है
3: मैंने सही किया ना बता दिया वरना ये तो बौखला जाता ना ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए
2: नहीं बोलना।
3: भाई साहब एक बात बताऊं आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है मैं ऐसी बात करता था कैसी हो वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं
2: तो पागल है क्या
3: चिल्लाओ मत ठीक है मैं रखता हूँ
2: करवा देना भी है आपसे
3: मरवाओ के क्या उठ जाएंगे
2: सॉरी
3: ठीक है चलो पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट
2: ओके
3: आई लव यू
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं मुर्गा बना रहा था
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: 89.6
7: Ladies and gentlemen, fasten your seatbelts and wait for the no smoking sign. We are gonna go.
8: Club Mirchi with Oyon Deka and DJ Richard.

0: मिर्ची मिर्ची मिर्ची।
1: हेलो पीपल, वीकेंड फाइनली नॉक कर रहा है और क्लब मिर्ची ऑफिशियली ऑन हो चुका है। बाहर बारिश की बूंदे, अंदर बेस की धूम, तो वॉल्यूम फुल करो, मूड कूल करो और डांस फ्लोर हो या बोर्डम, गाड़ी हो या बालकनी, आज रात सिर्फ एक ही रूल है, नो रूल्स ओनली गुड वाइब्स। मैं हूँ मिर्ची ऑयोंटिक एंड विद मी इज डीजे रिचर्ड। अगले कुछ घंटों तक पार्टी नॉन स्टॉप, हिट्स बैक टू बैक और वर्ल्ड कप फीवर के साथ बारिश वाली मस्ती भी। वेलकम टू

वीकेंड का सीन सिंपल है, फोन साइलेंट, वरीज ऑफलाइन और म्यूजिक फुल वॉल्यूम, बारिश को बैकग्राउंड डांसर बना दो और खुद बन जाओ टुनाइट्स मेन कैरेक्टर। क्लब मिर्ची इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। लेट्स

वीकेंड का मतलब सिर्फ रेस्ट नहीं, बेस्ट भी। डांस करो, गाओ या बस बारिश देखते हुए चिल करो। हम लेकर आए हैं नॉन स्टॉप हिट मशीन, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विद क्लब मिर्ची।

बारिश की स्मेल, फ्रेश प्लेलिस्ट और वीकेंड का थ्रिल, बस इसी कॉम्बो के लिए तो पूरा हफ्ता वेट करते हैं। अब डांस करना कंपलसरी है विद क्लब मिर्ची एंड डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंतिका।

Once again, football का रूल सिंपल है, 90 मिनट्स में कुछ भी हो सकता है, और वीकेंड का रूल एक अच्छा गाना पूरा मूड बदल सकता है, and that is what we do on Club Mirchi. So keep dancing, keep smiling, we just got started. DJ Richard and Mirchi, all you won't take out with you tonight.

बस दोस्तों, आज की पार्टी यही फुल टाइम विसल लेती है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका आपके साथ, फुटबॉल का जोश, वीकेंड का स्वैग और म्यूजिक की ये एनर्जी हमेशा साथ रखिए। सेफ रहिए, रिस्पॉन्सिबली सेलिब्रेट कीजिए, बारिश का मजा लीजिए और याद रखिए, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। अगले वीकेंड फिर मिलेंगे और फिर मचाएंगे फुल ऑन हंगामा। टिल देन कीप द म्यूजिक लाउड, द स्माइल्स लाउडर। दिस इज योर होस्ट मिर्ची ओयोंतिका साइनिंग ऑफ फॉर द वीकेंड। टाटा।